मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात

0: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की तलछाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती यहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाई ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस। स्वर था वाणी जयराम का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार। वो मनुष्य जो जीवन में सत्य और ईमानदारी का मार्ग चुनता है, उसका सफर निश्चित ही ईश्वर के चरणों में समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 8 बजने को हैं, कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा

0: और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने

0: ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सवेरा और साथ ही पहली तारीख यानी कि एक नया महीना भी। वैसे तो हर महीने की शुरुआत पहली तारीख से ही होती है, लेकिन आज की पहली तारीख कुछ ज्यादा खास है, क्योंकि आज से सड़कों पर लौट गई है रौनक स्कूल बसों की, स्कूल वैन की। सुबह का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत, अलग अलग रंगों की यूनिफॉर्म में, कंधे पर स्कूल का बैग लटकाकर, आंखों में ढेर सारे सुनहरे सपने लेकर स्कूल जाते बच्चे। आज की हमारी बातें स्कूल और स्कूल के बच्चों पर होगी, लेकिन चूंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हमारा पहला जो सेगमेंट है, पहली जो कड़ी है, वो है टीम परिचय की। तो चलिए सबसे पहले करवाते हैं आपको आज की टेक्निकल टीम से परिचय।
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं प्रकाश पवार और नरेंद्र सिंह राठौड़। कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं विक्रम सिंह भाटी। कंसोल पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राइमरी चैनल पर पोलाश दास और एफएम पर कल्याण सिंह विश्नोई। आज नमस्कार कार्यक्रम में हम दो सूत्रधार, मैं मीता मुल्तानी
0: और मैं लीना माथुर।
1: नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरोड़ ने।
0: तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा आपको सुनवाते हैं गाने नए नवेले, लेकिन आज चूंकि बच्चों के स्कूल का नए सत्र का पहला दिन है, तो आज का पहला गाना हमारे प्यारे बच्चों के लिए।

0: पता है आज जब स्टूडियो आ रही थी ना मैं, तो मैंने स्कूल बस में बच्चों को इतना हंसते खिलखिलाते हुए स्कूल जाने का लिए एक नया ही एक्साइटमेंट उन बच्चों में था, जोश था। इतने सुंदर और इतने मुस्कुराते हुए बच्चे देखकर आज मुझे पता है मीता, अपना बचपन, अपना स्कूल टाइम याद आ गया।
1: बिल्कुल ना लीना, हम लोग भी कितना खुश होते थे स्कूल खुलने
0: हाँ,
1: के टाइम।
0: ऐसा
1: और
0: लगता था ना जैसे हम एक जेल से छूट रहे हैं। घर में
1: हाँ
0: रहते थे तो हमको ऐसा लगता था कि बस ये कर लो, वो कर लो, बैठो, ये मत करो, वो मत करो। स्कूल मतलब अपनी एक अपनी जगह, अपना प्लेस।
1: और अच्छा, हमारे समय में ना ऐसा हुआ करता था कि हम जब स्कूल जाते थे तो तांगे हुआ करते थे, और
0: हाँ,
1: हम तांगों में बैठकर
0: टांगों में
1: स्कूल
0: बैठ कर
1: जाते
0: जाते
1: थे।
0: थे।
1: और कैसे, मतलब आज सोचते हैं तो लगता है कि एक तांगे में इतने इतने बच्चे
0: हाँ, कैसे बैठ
1: बैठकर,
0: जाते थे।
1: और वो पावदान पर पांव रखकर खड़े भी हो जाते थे, मस्ती
0: हाँ,
1: करते थे।
0: और
1: और
0: सच्ची में बताऊँ, एक पत्थर के ऊपर धागा बांध के उसमें से लटकाते नहीं थे हम लोग,
1: हाँ,
0: और
1: बिल्कुल
0: इतनी इतना एंजॉय होता था। आज मुझे ऐसा ही लगा कि समय चाहे कोई भी हो ना, बचपन जो है वो अपनी खिलखिलाहट के लिए, अपने हंसने मुस्कुराने के लिए जगह बना ही लेता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बना लेता है। और अब इस गीत को सुनकर हम और बच्चे सभी थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं।
0: हाँ,

0: तब एक फिल्म की तरह हमारे आंखों के सामने सारी चीजें आ जाती है।
1: बिल्कुल आ जाती है।
0: दो चोटी बांध के जो निकलते कुछ बाल कटे हुई लड़कियां होती थी, और
1: हाँ
0: कैनवास का स्कूल बैग कंधे पर टांग कर हम कैसे
1: बिल्कुल,
0: अपने घर से निकलते थे। और वो बहुत ही टिफिन की जो अचार की सौंधी सौंधी महक है ना, वो
1: ओ
0: तो भुलाए नहीं
1: हाँ।
0: भूलती।
1: और उस समय बिस्किट की इतनी वैल्यू थी मीता, कि अगर कोई बच्चा बिस्किट अपने टिफिन में लाता था ना, तो वो सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को कान में आके कहता था, पता है मैं आज बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। तो ये एक बड़ी एंजाइटी रहती थी कि किस तरीके का टिफिन। आजकल तो बच्चों के टिफिन बिल्कुल चेंज हो गए हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: चेंज
1: है
0: हो
1: ना,
0: गए हैं।
1: टिफिन के
0: और
1: डब्बे भी चेंज हो गए हैं आजकल
0: हाँ,
1: तो।
0: हमारे समय में जो टिफिन आते थे वो कितने अलग तरह के थे, और
1: बिल्कुल
0: आजकल तो नित नई
1: हाँ,
0: डिजाइन्स।
1: लेकिन देखो घूम के हर चीज वापस वही आ रही है। हम भी स्टील के डब्बे ले जाया
0: हाँ
1: करते थे,
0: हाँ
1: और आज फिर से जो है सब लोग यही कहते हैं कि भी बाहर से कितना भी फैंसी हो,
0: हाँ
1: अंदर से जिस डिब्बे में खाना रखना है वो जो है वो स्टील का ही होना
0: होना
1: चाहिए।
0: चाहिए
1: और पता है
0: बिल्कुल।
1: जो बच्चे पैदल या साइकिल पर आते थे ना, उनको हर समय इस बात का डर रहता था कि कहीं लेट नहीं पहुंचे, स्कूल
0: हाँ
1: की घंटी बज गई तो अलग से खड़ा होना पड़ेगा। और उस समय हुआ भी करते थे, मतलब टीचर्स की ये जिम्मेदारी थी कि अगर कोई बच्चा जो खुद आ रहा है वो लेट आ रहा है, तो वो उससे पूछे कि तुम घर से ही लेट चले हो
0: या
1: या रस्ते
0: रास्ते में
1: में
0: लेट
1: कहीं,
0: हो गया।
1: क्योंकि
0: हाँ
1: क्योंकि बाल सुलभ चीजें होती है ना ये, कोई कुछ हो रहा है तो उसको खड़े, उस समय मतलब अगर कोई किसी भी तरह का काम होते हुए देखने के लिए रुक जाना एक बड़ा सहज होता था,
0: बिल्कुल।
1: बच्चे रुक
0: और
1: जाया करते
0: उस
1: थे।
0: समय जो अनुशासन होता था ना स्कूल
1: हाँ
0: का, वो तो एक
1: हाँ
0: अलग ही था। आजकल के
1: हाँ
0: बच्चों में वो डिसिप्लिन, वो डर, वो टीचर से बॉन्डिंग, वो नहीं देखने को मिलती जो हमारे
1: बिल्कुल
0: समय में
1: बिल्कुल हाँ।
0: थी।
1: और इसीलिए शायद हम लोग ये मानते हैं कि चाहे कैसा भी दौर हो, बच्चे के ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए स्कूल बहुत जरूरी
0: बहुत जरूरी
1: है ना।
0: है।
1: टीचर से मतलब वो कहते हैं ना गुरु, अब देखो गुरु चाहे समय का कैसा भी दौर हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन गुरु जो है ना वो आज भी वही है कि गोविंद से पहले है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं मीता,
1: हम्म,
0: मुझे ना जब अपने स्कूल की याद आती है ना, तो मुझे वो समय याद आता है जब मुझे जितना प्यार अपने टीचर्स, अपनी फ्रेंड्स और अपनी पढ़ाई से था ना, उतना ही प्यार मुझे स्कूल की एक और चीज़ से था।
1: अच्छा वो
0: तुम
1: क्या?
0: अंदाज़ा लगा सकती हो? चलो मैं बताती हूँ, मैं
1: अच्छा
0: बताती
1: अच्छा
0: हूँ। वो चीज़ है स्कूल की घंटी।
1: अरे वाह।
0: पता है मुझे वो स्कूल की घंटी इतनी अच्छी लगती थी, खासकर जब वो घंटी जो है वो खाने की छुट्टी और स्कूल की छुट्टी के समय बजती थी, और जो काका उसको बजाते थे ना, उसका वो जो रिदम और वो जो उसकी म्यूजिक थी ना, वो आज भी मेरे कानों में बसी हुई है।
1: अच्छा।
0: पता है जब क्लास के पीरियड्स, लेसन्स चेंज होते थे ना, तो वो मुझे घंटी बड़ी सीरियस सी लगती थी, जैसे 1 2 ऐसे बज रही है।
1: हाँ हाँ
0: लेकिन जब काका उस घंटी को खाने की छुट्टी के लिए और स्कूल की
1: इंटरवल
0: छुट्टी,
1: की।
0: हाँ इंटरवल के
1: हाँ
0: लिए
1: अच्छा
0: बजाते,
1: अच्छा
0: हाँ भाई हम तो खाने की छुट्टी कहा
1: बिल्कुल
0: करते थे, है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: वही कहते थे।
0: आजकल इंटरवल और ऐसे कहा लंच
1: हाँ
0: ब्रेक ऐसा
1: हाँ
0: कहा
1: हाँ
0: जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था ना, वो जो म्यूजिक थी ना, टन टन टन टन टन,
1: हाँ
0: वो मुझे
1: हाँ
0: ऐसा लगता था जैसे एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक, मुझे वो अपने कानों को इतना सुहाता था मुझे वो
1: आज भी वो
0: म्यूजिक,
1: घंटी अपने कानों में कई बार
0: हाँ
1: सुनाई
0: बजती
1: देती है
0: है,
1: और
0: बिल्कुल
1: स्कूल की
0: सुनाई
1: याद
0: देती है,
1: दिलाती है।
0: हाँ बिल्कुल याद दिलाती है। और खासकर जब हम अपने बच्चों की स्कूल जाते हैं ना, तो हम हर चीज को देखते हुए सबसे पहले मुझे लगता है इधर घंटी कहाँ लगी हुई है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और साथ ही हमें याद हो आता है वो प्रार्थना का समय,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: वो घंटी बजने से पहले हम प्रार्थना के बाद सरस्वती माता को
0: हाँ
1: प्रणाम करते
0: प्रणाम,
1: थे, कुछ प्रार्थना बोलते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और आज इन सब बातों से गुजरते हुए इस पड़ाव में जब बच्चे
0: हाँ
1: स्कूल जा रहे हैं और आज वो 1 जुलाई
0: हाँ
1: का दिन है, तो हमें
0: हाँ
1: आज भी वही लगता है। और काश हम भी स्कूल में
0: हाँ
1: होते,
0: उस
1: हम फिर से
0: जगह
1: बच्चे बन जाएं
0: बिल्कुल बच्चे बन
1: और
0: जाएं,
1: वही सुनहरे दौर में खो जाएं जब
0: बिल्कुल
1: हमारा
0: बिल्कुल
1: खूबसूरत बचपन था।

0: आज इस नए सेशन के पहले दिन हम दोनों भी अपने स्कूल टाइम को याद करके एकदम तरोताजा हो गए, है ना लीना?
1: हाँ बिल्कुल हो गए। और लेकिन चूंकि ये स्कूल का पहला दिन है, थोड़ी सी अब सीरियस बात भी हम कर लेते हैं। और पढ़ाई में मेहनत की बहुत दरकार है भाई, आजकल तो
0: बिल्कुल
1: कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो
0: हाँ
1: आज यहाँ से हम अपने सभी बच्चों को, हमारे देश के इस सुनहरे भविष्य के कर्णधारों को, एक छोटी सी बात समझाना चाहते हैं, है ना? अगर टूटने लगे हौसला, तो बस ये बात याद रखना बच्चों, अगर टूटने लगे हौसला तो बस ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल को बच्चों, क्योंकि तुम तो जुगनू हो और जुगनू को कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। 9 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जीरा

0: श्रमजीवी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल। और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा, संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस दो दिन के सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047, AI इनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। केंद्र सरकार ने VBG रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम नहीं हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर VBG रामजी के तहत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत बढ़ोतरी हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। VBG रामजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल यानी मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। इस बीच तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के दाम में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम के अनुसार संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत घटकर 2,930 रूपये हो गई है। इस निर्णय से रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और खाद्य तथा पेय पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यवसाय

0: को राहत मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़ा के पास आज अलसुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने आकाशवाणी को बताया कि यह दुर्घटना एक स्लीपर बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद उसमें आग लगने से हुई। आग के बाद कई यात्री जलती हुई बस में फंस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों में से अधिकांश मध्य प्रदेश और ऋषिकेश के हैं।
1: हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस और जाते टाइम इनका कोई ट्रोला से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन बाद मालूम पड़ेगा। 35-36 सवारियां होनी चाहिए इसमें, इसमें 22 इंजर्ड हुए हैं और 8 की कैजुअल्टी है। ये 2:30 से 3 बजे के बीच का है, सुबह रात को मतलब। और जो इंजर्ड थे उनको प्राथमिक उपचार चल रहा है उनका, वो ठीक है, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है। पर जो कैजुअल्टी हुई है वो काफी दुखदायी है, हो सकता है ट्रोला से टकराई हो या ड्राइवर को झपकी आई हो, ये तो अभी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। करौली जिले के पांचना बांध के पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। जयपुर में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद लिखित समझौता हुआ। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़े जाने की तारीख तय करेगा, इसके बाद नहरी तंत्र की जांच के लिए जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। हमारी करौली संवाददाता ने बताया कि 2100 एमसीएफटी क्षमता वाले पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस समझौते से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
2: समझौते के तहत गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में भी जल प्रवाह शुरू होगा। जल संसाधन विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़ने की तिथि तय करेगा, जिसके बाद नहरी तंत्र की तकनीकी जांच और टेस्टिंग शुरू की जाएगी। सरकार ने नहरों की मरम्मत के कार्य को भी गति देने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि कमांड क्षेत्र के किसान नहरों में पानी छोड़ने और कैचमेंट क्षेत्र के किसान लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से अपने गांवों को पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से जिले के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: और अब मौसम। हवाओं में नमी के प्रभाव से प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी का असर है। दिन के समय कड़ी धूप के साथ उमस भी लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा। संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत सभी श्रोताओं का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, हर दिन हर तारीख अपने में कुछ ऐसी घटनाएं लिए हुए होती है जो उस दिन की इम्पोर्टेंस को तो बढ़ा ही देती है, साथ ही साथ वो घटनाएं

0: उस तारीख को इतिहास में अमर कर देती हैं। तो चलिए हम भी अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है आज के दिन का इतिहास।
1: जी हाँ श्रोताओं, साल के 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने बाकी हैं, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। और आज के दिन ही साल 1852 में सिंध के मुख्य आयुक्त सर बर्टले फ्लोरे द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया था आज ही के दिन।
0: और 1 जुलाई 1949 का दिन था जब स्वतंत्र भारत में छोटी रियासतों का विलय हुआ। तब त्रावणकोर और कोचीन रियासतों को मिलाकर त्रावणकोर कोचीन राज्य तो बना दिया गया, लेकिन उसे मद्रास प्रांत के अधीन ही रखा गया।
1: साल 1960 और दिन था आज का। घाना अफ्रीका का एक प्रजातंत्र राज्य है जिसे 1 जुलाई को गणराज्य घोषित किया गया था।
0: 1 जुलाई 1991 का दिन था जब बारसा संधि को भंग किया गया।
1: एक जुलाई 1996 को ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्वेच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार लागू किया गया था।
0: और 1 जुलाई 2000 जब लॉर्ड्स के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया।
1: एक जुलाई 2003 जब समुद्र में सबसे गहराई तक जाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाली जापानी पनडुब्बी प्रशांत महासागर में लापता हो गई थी।
0: 1 जुलाई 2006 का दिन था जब परिमार्जन आज तक के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने।

0: दोस्तों, आज है बुधवार का दिन और बुधवार को हम अपने सप्ताह विशेष सेगमेंट में बात करते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की, यानी कि इतिहास के कुछ स्मारकों की। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे जोधपुर के प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट तुरजी का झालरा, यानी कि तुरजी की बावड़ी के बारे में। तुरजी की बावड़ी हमारे जोधपुर शहर में स्थित 18वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक बावड़ी है, जिसका निर्माण 1740 ईस्वी में मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह जी की महारानी तंवर ने अपनी प्रजा को पानी की स्थायी सुविधा देने के लिए करवाया था। चूंकि मारवाड़ क्षेत्र में पानी की हमेशा दिक्कत रही है, तो शुष्क और सूखा क्षेत्र होने के कारण पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए शाही परिवार की महिलाओं ने इस सार्वजनिक जल परियोजना का नेतृत्व किया।
1: इस बावड़ी के निर्माण में श्रोताओं, गुलाबी बलुआ पत्थर, जिसे पिंडवाड़ा पत्थर भी कहते हैं, उसको काम लिया गया है। इस झालरे की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की, हाथियों की और पौराणिक दृश्यों की बहुत बारीक और आकर्षक नक्काशी की गई है। ये बावड़ी लगभग 200 फीट गहरी है और इसमें उतरने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियों का जटिल और खूबसूरत जाल बनाया गया है, जो प्राचीन जल प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है।
0: आधुनिक समय में जीर्णोद्वार करके इसे पर्यटन स्थल का रूप दिया गया। आज ही बावड़ी जोधपुर के प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है और अब तो इसके आसपास के क्षेत्र में स्टेपवेल स्क्वायर के रूप में विकास हो गया है, जहां कैफे, बुटीक और दुकानें भी खुल गई हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी ये एक बहुत सुकून भरी जगह है। और जहां तक इस झालरा शब्द का मतलब है, तो राजस्थानी में झालरा शब्द का अर्थ ही होता है सीढ़ीदार कुआं, जो कि इस तुरजी के झालरे की दीवार में जो चारों तरफ सीढ़ियों का जाल बनाया गया है, इस बात को दर्शाता है कि ये एक सीढ़ीदार कुआं है।
1: दोस्तों, तुरजी का झालरा जैसी बावड़ियां महज उपयोगिता वाली संरचनाएं नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी रही हैं। तो अगर आप जोधपुर घूमने आए हैं तो तुरजी का झालरा जरूर

0: देखें।
1: अब चूंकि बात राजस्थान और जोधपुर की है, तो अगला गाना भी हम आपको कुछ ऐसा ही सुनवाते हैं जिसमें राजस्थान का थोड़ा सा टच हो।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। आज यानी कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वैसे तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत देश में ये दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में 1 जुलाई को मनाया जाता है। गौरतलब है कि 1 जुलाई डॉक्टर बीसी रॉय यानी कि बिधान चंद्र रॉय की जन्म दिवस भी है और पुण्य स्मरण दिवस भी।
1: दोस्तों, बीसी राय देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। आजादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की चिकित्सा सेवा में समर्पित कर दिया। 1 जुलाई 1882 को बिहार में जन्मे बीसी राय के पश्चिम बंगाल में अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान कई अहम विकास कार्य उन्होंने किए। उनके समाज कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। 1962 में 1 जुलाई के दिन ही आपका निधन हो गया।
0: और अगर डॉक्टर्स डे की बात करें तो अमेरिका की जॉर्जिया की यूडोरा ब्राउन अल्मोंद के प्रयासों से पहली बार 30 मार्च 1930 को डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस दिन को मनाने के पीछे उनकी भावना थी कि आम आदमी को उसके जीवन में डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस को समझाया जाए। और तारीख 30 मार्च इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन जॉर्जिया में डॉक्टर काफ्रोड डब्ल्यू लॉन्ग ने पहली बार ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया। तो बस तब से ही चिकित्सक दिवस मनाने का चलन शुरू हो गया।
1: और श्रोताओं, चिकित्सक धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप है। भगवान के दिए इस मनुष्य जीवन को रोग मुक्त रखने का दारोमदार केवल चिकित्सकों पर ही है। बात चाहे किसी बच्चे को जन्म देने की हो या किसी वृद्ध को बीमारी से बचाने की, डॉक्टरों की मदद हमेशा मानव को कष्टों और रोग से बचाती है। यही वो एक ऐसा पेशा है जिसमें दवा और दुआ दोनों का संगम देखने को मिलता है। चिकित्सक दिवस को मनाने का महत्व ये भी है कि सभी चिकित्सक अपनी जिम्मेदारियों को समझें और लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित दुख, तकलीफ और रोग के प्रति सजग रहें।

0: दोस्तों, आज यानी कि 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुआ, और इसी नई व्यवस्था के लागू होने की खुशी में हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के बाद जीएसटी को देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधारक माना गया है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि माल और सेवा कर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हम फोन आउट के जरिए बात करेंगे सीए प्रफुल्ल फुफलिया से।
1: जी हाँ श्रोताओं, सीए प्रफुल्ल फुफलिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य एवं कंपनी सेक्रेटरी हैं। उन्हें लेखा, कराधान एवं वित्तीय परामर्श के क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। तो हमसे फोन द्वारा जुड़ चुके हैं प्रफुल्ल जी।
0: हेलो,
2: जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम नमस्कार में।
2: बहुत धन्यवाद मैम, और मेरे सारे फेलो सीएस को हैप्पी सीए डे, सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे, और सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को हैप्पी जीएसटी डे।
0: जी बिल्कुल, आपको
2: तो
0: भी सीए दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार की, धन्यवाद आपने जीएसटी दिवस की बधाई हम सभी को दी।
1: प्रफुल्ल जी, आज इस शुभ दिवस पर हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जीएसटी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी और ये आखिर क्या है?
2: मैं एक तरीके से कहूंगा तो ये एक टैक्स रिवोल्यूशन है जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में, 15 अगस्त 1947 के बाद में सबसे बड़ा अगर कोई टैक्स रिवोल्यूशन रहा है तो वो जीएसटी है।
1: अच्छा
2: अब हम जीएसटी को समझे तो जीएसटी एक गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स है जिसको हम जीएसटी कहते हैं। 1 जुलाई 2017 जिस दिन ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, उसके पहले इंडिया के अंदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई, सर्विसेज सप्लाई के ऊपर टोटल 17 टाइप ऑफ टैक्सेस और 13 सेस लगते थे। तो
1: अच्छा
2: आप ये समझ सकते हैं कि कितने वैरायटी ऑफ टैक्सेस थे। उन टैक्स को जो हमारे तत्कालीन उस समय के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी की एक विजन था कि वी शुड हैव वन नेशन वन टैक्स,
1: ओके
2: तो उन सब टैक्सेस को एक ही टैक्स में मर्ज करने के लिए जीएसटी लाया गया। और जीएसटी का उद्देश्य ही यही था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ताकि पूरे इंडिया में एक टाइप ऑफ टैक्स रहे, एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रहे जिसका नाम जीएसटी रहे। तो जीएसटी इस वजह से लाया गया था, और उसके पीछे का कोर मकसद मैं आपको बताऊं, आज 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया के अंदर एक ही गुड्स के ऊपर 17 टाइप ऑफ टैक्सेस जैसे मैंने बताया वो लगता था। तो उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था, टैक्स ऑन टैक्स

0: लगता था। आप देखे अगर हम कोई इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर वेट लगता था या सीएसटी लगता था। तो आप देख सकते हैं एक्साइज के ऊपर वेट हमको देना पड़ता था। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं हम हमारी टैक्सेशन लैंग्वेज के अंदर, इसको टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था। सेकेंड थिंग ये इन्फ्लेशनरी था, क्योंकि आप अगर टैक्स ऑन टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स जो टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है तो वो एक इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इंडिया में लाता है। सेकेंड थिंग ग्लोबल मार्केट में हमारा गुड्स कभी भी कॉम्पिटेटिव नहीं रहता था और हम इसे कहते थे एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेस होता था इंडिया से, क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ टैक्सेस जिसकी इनपुट व्यापारी नहीं ले सकता था और वो गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूडेड थे, तो कभी भी ग्लोबल मार्केट में हमारे गुड्स कॉम्पिटेटिव बनते ही नहीं थे। तो उनको लाने, उसको कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए भी इस टैक्स को लाने की एक मंशा थी। थर्ड, हर स्टेट अपना वेट लगाता था तो वैरायटी ऑफ टैक्सेस डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रहते थे, रेगुलेशंस और रूल्स हर स्टेट के टैक्सेस के डिफरेंट थे, तो बिजनेस करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजी नहीं था। और वैरायटी नंबर ऑफ टैक्सेस होने की वजह से टैक्स चोरी और उसका डिजिटलाइजेशन होना भी पॉसिबल नहीं था। तो एक जीएसटी आने से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स सारी मर्ज हो गई और जीएसटी हमें एक ऐसा टैक्स के फॉर्म में मिला जो बहुत टैक्स डिजिटली फ्रेंडली है। आप इवेजन के नाम पे देखेंगे 9 साल के अंदर टैक्स इवेजन में बहुत ही कमी आई है, और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सारी की सारी, जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था 1 जुलाई 2017 को तो ऑलमोस्ट 80 लाख टैक्स पेयर्स हुआ करते थे, और आज की डेट में कल का गवर्नमेंट का फिगर है 1.65 करोड़ टैक्स पेयर्स है। तो 9 सालों में डबल कर दिए है उस टैक्स ब्रैकेट को, टैक्स पेयर ब्रैकेट को।
1: प्रफुल जी, बहुत अच्छे से आपने अभी बताया कि किस तरह से जीएसटी लागू किया गया और इसका उद्देश्य क्या रहा। क्या हर सामान और सेवा पर जीएसटी लगता है?
0: नहीं, हर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। कुछ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी एग्जम्प्ट है, कुछ निल रेटेड सप्लाई कहलाती है और कुछ नॉन जीएसटी जीएसटी कैटेगरी में आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑल दी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो भी हम लोग, जैसे सारी फल सब्जियां हैं, दूध है, हम लोग आटा दाल है, जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, या हम लोग सर्विसेज साइड में जाएं तो एजुकेशन स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा तथा मेडिकल सर्विसेज, ये सब जीएसटी के दायरे से बाहर है। जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा हम देखें पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। ये सब सेवाएं नॉन जीएसटी सप्लाई कहलाती हैं। फॉर टाइम हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से रहता है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाया जाएगा, दायरे में लाया जाएगा, बट हाल फिलहाल ये नॉन जीएसटी सप्लाई में है और काफी बेसिक नीड्स को उन्होंने एग्जम्प्टेड गुड्स कर रखा है। तो इसके लिए एक इलैबोरेट लिस्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, सारी जो सर्विसेज एग्जम्प्ट है और जो गुड्स एग्जम्प्ट है।
2: जी जी सर, यहाँ एक और सवाल जहन में आता है कि जो ये जीएसटी आपने बताया कि कौन सी चीज़ें जीएसटी के उससे बाहर है और कौन सी है, तो क्या ये जीएसटी की दर जो है वो सब चीज़ों पर एक जैसी होती है?
0: नहीं, सारी चीज़ों पे एक जैसी दर नहीं है। इसमें टैक्स ब्रैकेट्स हैं। हम ब्रैकेट्स की बात करें तो 0% है, जो हमने बताया कि जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, वो जीएसटी 0% में आती है। फिर हम लोग देखें तो 3% टैक्स है, जैसे सारे लेडीज के लिए गोल्ड एंड ज्वेलरी गवर्नमेंट ने एकदम मिनिमम टैक्स कर रखा है, 3% टैक्स है।
2: हाँ भाई, ये तो जरूरी है।
0: और फिर हम बात करें 5% टैक्स है, जो बेसिक नीड्स से थोड़ी ऊपर की चीजें हैं, जो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ बट वो बेसिक नीड्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ने 5% ब्रैकेट में रख रखा है। सारी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने 18% और जो बेसिक नीड्स से ऊपर की थिंग्स हैं उनको 18% ब्रैकेट में, गुड्स में 18% में रखा है। और एक लास्ट कैटेगरी है 40% की, जिसको हम कहते हैं सिन और लग्जरी गुड्स के लिए। लग्जरी गुड्स हम देखें तो 1500 सीसी से ऊपर के व्हीकल्स, कार्स, और 350 सीसी ऊपर की मोटरसाइकिल्स, जो लग्जरी नेचर में आती है, उनको उन्होंने 40% में रखा है। और सिन गुड्स में टबेको, सिगरेट्स और ये सारा जो सिन है उसको हम लोग करें, गैमलिंग जिसमें हम लोग करते हैं, कैसीनोज की जो गैमलिंग होती है, उसको 40% ब्रैकेट में गवर्नमेंट ने रख रखा है।
2: मतलब मोटे तौर पर जीएसटी के 4 से 5 स्लैब्स हैं।
0: और मेजॉरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज 5 और 18% के।
2: जी
1: सर, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो बिल में जीएसटी अलग से भी जोड़ा जाता है, क्या हमेशा ऐसा होता है?
0: जी, ये हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि

0: वैसे जीएसटी के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक कंपोजिशन है और एक रेगुलर है. कंपोजिशन वाले टैक्स पेयर को डायरेक्टली खुद ही अपनी सर्विसेज और गुड्स की सप्लाई के ऊपर 1% देना पड़ता है, और उसके अलावा रेगुलर टैक्स पेयर्स है. रेगुलर टैक्स पेयर्स को जीएसटी एडिशनल जो भी रेट ऑफ टैक्स है 5% 18% जो भी रेट ऑफ टैक्स है उसको सेपरेट चार्ज करना पड़ता है. उसका रीजन है जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स में या हम लोग कहें इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां पर एंड कंज्यूमर को ही जीएसटी का भार वहन करना पड़ता है. बिजनेसमैन तो एक ट्रस्टी है गवर्नमेंट के लिए, जो इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देता है. उसका इससे कोई उसके लिए ये इनकम सोर्स नहीं है जीएसटी, तो ही जस्ट अ ट्रस्टी, और वो ट्रस्टी के फॉर्म में टैक्स कलेक्ट कर रहा है एंड कंज्यूमर से और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहा है. तो आपको हमेशा प्रॉपर जीएसटी बिल लेना चाहिए, और जो जीएसटी चार्ज कर रहा है बिजनेसमैन वो आपकी तरफ से गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को एक कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स.
1: जी. यहाँ एक और बात है कि अगर हम ऐसे जो नॉर्मल शॉपिंग के लिए जाते हैं, ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, तो कभी जीएसटी के नाम पर अगर दुकानदार ग्राहक से ज़्यादा पैसा ले तो ग्राहक को क्या करना चाहिए सर?
0: ये सबसे पहले आपको एज अ ग्राहक हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा राइट दोनों ही है, आपको उनसे टैक्स इनवॉइस कलेक्ट करना है. जो भी बिजनेसमैन जहां से भी आपने परचेजिंग की,
1: हाँ, पक्का बिल लेना चाहिए.
0: पक्का बिल लेना चाहिए, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और राइट भी है, और बिजनेस उस शॉपकीपर को वो जरूर देना ही पड़ेगा आपको. आप उससे देखें कि जीएसटी नंबर मेंशनड है कि नहीं है. अगर जीएसटी नंबर उसके ऊपर मेंशनड है तो वो फिर आप आइए कि वो जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा है क्या टैक्स रेट पे कलेक्ट कर रहा है और गुड्स का नाम उसने क्या लिखा है. अगर आप गुड्स आप इजीली अभी तो सबके पास मोबाइल रहते हैं और सबके पास गूगल की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर टैक्स रेट इजीली चेकआउट कर सकते हैं. वेराइटी ऑफ वेबसाइट्स है जो आपको प्रोवाइड करती है कि किस गुड्स के ऊपर कितना टैक्स है, तो आप उस पर देखिए और उसने उतना ही चार्ज किया कि नहीं किया. अगर कोई व्यापारी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, बट वो आपको बिल दे रहा है और विदाउट जीएसटी नंबर लिखे और टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो वो ही गलत है. या वो एक्सेसिव रेट लगा के टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो वो गलत है, या आपसे एक्सेसिव अमाउंट ले रहा है तो गलत है. तो उसके लिए आपके पास एक हेल्पलाइन प्रोवाइड कर रखी है सीबीआईसी ने, तो आप उस हेल्पलाइन पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. या आपके पास जीएसटी ग्रीवेंस का एक पोर्टल है सेपरेट, आप उस पे कंप्लेन डाल सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज आप कंज्यूमर हेल्पलाइन भी अवेलेबल है जो कंज्यूमर फोरम की तरफ से है, आप उस पे कंप्लेन कर सकते हैं. और इसके बाद में भी आपको लगे कि जो व्यापारी है वो बहुत बड़े लेवल पे ये कर रहा है, लार्ज स्केल पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत लोकल जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके भी कर सकते हैं, जहां पर हर डिपार्टमेंट में एक एंटी इवेजन अथॉरिटी या जिसको हम एनफोर्समेंट विंग बोलते हैं वो बैठी है, तो आप वहां पर उनको शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पक्का बिल मांगने से शायद इन सब चीजों की जो संभावनाएं कम हो जाती है. पक्के बिल में इतनी धांधली होना इतना शायद आसान नहीं है सर.
0: आसान नहीं है,
1: है ना? हाँ
0: जी.
1: तो ये आम नागरिक जो है वो जीएसटी को समझने के लिए किस तरीके से, अभी तक जैसे आपने जो भी बात कही वो बिल्कुल ऐसी है कि हर किसी को जीएसटी के बारे में समझ आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा आम नागरिक जीएसटी को और सरल शब्दों में किस तरह से समझे?
0: मैम, एक सरल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये एक मॉडर्न और एक ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम का एक एग्जाम्पल है जो वर्ल्ड वाइड कॉपी होगा. ये इतना ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट ने एंड कंज्यूमर्स के लिए इतनी ट्रांसपेरेंसी दी है. आपका जीएसटी पोर्टल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोर्टल, जहां पर आप एक एक व्यापारी के बारे में जीएसटी नंबर से चेक कर सकते हैं कि वो वाकई में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं है. आपके पास सारी इलेबरेट लिस्ट ऑफ रेट ऑफ टैक्सेज अवेलेबल है किस गुड्स पे, और बहुत सी आसान शब्दों में उन्होंने उस लिस्ट को बना रखा है, वो आप देख सकते हैं. और प्लस आपकी इनवॉइसिंग का जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने डेवलप करवा रखा है वो इतना बढ़िया है कि हर जो कंज्यूमर है वो इस इनवॉइस को देख के इजीली समझ सकता है. तो अब थोड़ा सा मैं इसका कंक्लूड एक करूंगा कि जीएसटी के बारे में. जीएसटी एक सिर्फ टैक्स नहीं है बल्कि भारत की मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, बिजनेस को बढ़ावा देना, ईज ऑफ बिजनेस को करना और टैक्स कंप्लायंस बढ़ाना है. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमें हमेशा प्रॉपर जीएसटी बिल लेना चाहिए, सही जीएसटी देना चाहिए. और अगर आप सही जीएसटी नहीं दे रहे हैं, आप अगर अभी देखेंगे गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू के सोर्सेज दो होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में हम देखेंगे तो मेजर पोर्शन जीएसटी से आता है, और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी या अब हम

0: कहें कि बेसिक डिफेंस नीड्स, मेडिकल नीड्स, वो फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास मेजर टैक्स कलेक्शन के फॉर्म में जीएसटी आता है। और जो महीने का फिगर जब जीएसटी चालू हुआ था वो 80,000 करोड़ था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक शो करता है कि कितना अच्छे ढंग से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये फिगर 2 लाख करोड़ है तो साल का 24 लाख करोड़, और ये सारा 24 लाख करोड़ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जा रहा है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमेशा हमें जीएसटी पे करना चाहिए। और हमें कहीं पे भी लग रहा है कि जीएसटी की चोरी हो रही है या आपको एज पर लॉ वहां पर नहीं जीएसटी जमा हो रहा है, तो आप जरूर और जरूर शिकायत दर्ज करवाएं रिस्पेक्टिव जीएसटी डिपार्टमेंट में
1: जी
0: एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन।
1: जी सर, आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को इस जीएसटी दिवस के दिन पर उपादेयता बताई इसकी, कि कितना अच्छा है एक, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम जीएसटी पे करें एक आम नागरिक के लिए। आप इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: श्रोताओं, अभी फोन द्वारा हमसे जुड़े थे सीए प्रफुल्ल फुफलिया, विषय था जीएसटी दिवस, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति और संपादन था राजेश लामरोड का।

और दिन विशेष की कड़ी में ही अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, तो आज यानी कि 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके यानी कि नाम बदलकर इसका नामकरण भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। अपने स्थापना काल से भारतीय स्टेट बैंक में कुल 480 कार्यालय थे, जिसमें शाखाएं, उपशाखाएं और 3 मुख्यालय शामिल थे। और आज पूरे भारत में लगभग 23,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज का एसबीआई का नेटवर्क है। लगभग 65,000 से ज़्यादा एटीएम एसबीआई के मौजूद हैं। अगर डेटाबेस जानकारी की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक के लगभग 50 करोड़

0: ग्राहक हैं। SBI दुनिया के 50 बड़े बैंकों में से एक है और भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। चूंकि अब आज बैंक का स्थापना दिवस है, तो हमारा जो एक नमस्कार कार्यक्रम का सेगमेंट होता है काम की बात, तो क्यों ना मीता आज की काम की बात भी बैंक से जुड़ी हुई ही कर ली जाए।
1: बिल्कुल लीना, आज हम काम की बात में ये जानते हैं कि बैंक में पैसा जमा कराते हुए और निकालने जाते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना
0: बिल्कुल।
1: चाहिए। तो बिल्कुल, हम श्रोताओं ये ध्यान रखें कि जब भी हम पैसे जमा कराने जाएं तो अपनी पर्ची सही भरें, नाम, खाता संख्या, रकम शब्दों और अंकों दोनों में साफ लिखें।
0: जी।
1: गलती पर बैंक वाले से नई पर्ची ले लें, काटापीटी नहीं करें। इसके साथ ही कैशियर के सामने ही नोट गिनें, फटे, चिपके या नकली नोट नहीं हो, नोट गिनकर ही दें।

0: फटे चिपके या नकली नोट नहीं हों, नोट गिनकर ही दें, और यदि 2000 या 500 के नोट ज़्यादा हों तो पहले बता दें। पर्ची की रसीद जरूर लें, मोहर लगी काउंटर फॉइल जरूर लें, और घर जाकर पासबुक मोबाइल में एंट्री चेक करें। अगर 50,000 से बड़ा अमाउंट है तो पैन कार्ड की उसमें कॉपी लगेगी, इसके लिए आप पैन कार्ड जरूर लेकर जाएं। साथ ही अपनी सेफ्टी के लिए कैश बैग में रखें, भीड़ में दिखाएं नहीं और बैंक के अंदर ही गिनें। साथ ही लीना, पैसे निकालते समय हमें अपना पहचान पत्र साथ में रखना चाहिए। साथ ही यदि अगर हमारे सिग्नेचर कोई हैं तो वो भी बहुत ध्यान से करें हम, क्योंकि सिग्नेचर मैच होने चाहिए। विड्रॉल स्लिप, पासबुक, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें साथ रखें। चेक पर सेल्फ लिखें और उसके पीछे साइन करें।
1: हाँ।
0: बड़ी रकम हो तो बैंक पहले से कॉल करके उन्हें बता दें।
1: जी।
0: कैशियर के सामने ही नोट गिनकर लें, और नकली या फटे नोट लगें तो उसी समय बदलवा लें।
1: हाँ,
0: बाद में क्लेम कभी नहीं होता है। इसी तरह एटीएम से निकालते समय ये ध्यान रखें कि एक दिन में 40,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक ही कैश निकाल सकते हैं। यदि हमें बैंक से बड़ी रकम चाहिए तो एक दिन पहले बताना पड़ता है।
1: जी।
0: और पैसे निकालकर सुरक्षा के लिए सीधे अपने बैग में रखें। बैंक से बाहर निकलते ही फोन पर किसी से बात नहीं करें और किसी अनजान की मदद भी न लें।

पहचान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बांसुरी के जरिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत को तो लोकप्रिय बनाया ही, लेकिन साथ ही साथ पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर कई हिट फिल्मों के उन्होंने संगीत दिए, जिसमें चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय, ये सारी मूवीज जो हैं वो मुख्य रही हैं। और बांसुरी वादन और संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया। आज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हैं और उन्हें उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं। और साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज के हमारे प्रोग्राम में हमने ज्यादातर गाने शिव हरि की जोड़ी यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया जी की जोड़ी के ही सुनवाए हैं। अगला गाना भी हम आपकी नज़र करते हैं जो उन्हीं की जोड़ी का संगीतबद्ध किया हुआ है।

0: श्रोताओं, आज की हमारी खास बात यह है कि चार बार की पूर्व चैंपियन जर्मनी 50 साल बाद शूटआउट में हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। साथ ही फ्रांस ने स्वीडन को हराकर 16 अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है।
1: और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि आज यानी कि 1 जुलाई को हमारे देश के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्मदिन है। 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में जन्मे हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन कला को विश्व स्तर पर पहचान

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शमसुद्दीन को।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले सुनिए चंदन दास को।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे चुनिंदा गजलें। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर। सवेरे के 11:48 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। लीजिए साथियों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं देव कोहली का लिखा हुआ ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र। आइए ना आप और हम मिलकर सुनते हैं।

कुरुक्षेत्र फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। यह है फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से, गाने वो जो आपके सीने में धड़कते हैं। लीजिए बढ़ते हैं पायदान एक और आगे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कूली फिल्म का ये गीत। ये गीत लिखा है समीर ने, आवाजें हैं पूर्णिमा और कुमार सानू की। फिल्म का नाम है कूली नंबर 1।

जेठ की दोपहरी, गर्मी का मौसम और जेठ का महीना, और ऊपर से ये कड़क धूप। लगता है कि ये कड़क धूप हमें मार ही डालेगी उमस, और ये ज़बरदस्त। और जब ऐसा लगता है तो मन करता है कि हम घर में ही बैठे रहें और कूलर और पंखा चलाकर हम जो है आराम फरमाएं। पर ये ज़िंदगी है मेरे दोस्तों, काम के लिए निकलना पड़ता है, पेट के लिए दौड़ना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है, है ना। ये तो ज़िंदगी का सफ़रनामा है जो निरंतर नित नई चाल से चलता रहता है, और हमें इसको ब्रेक नहीं करना है। ब्रेक किया तो हम भी घर पे बैठ जाएंगे, और क्या होगा नतीजा आपको पता है। चलिए एक और पायदान बढ़ते हैं आगे फिल्म संगीत में, गाने वो जो आपके सीने में धड़कते हैं। अगले पायदान पर हम आपको सुनवा रहे हैं डुप्लीकेट फिल्म का ये गाना। ये गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, इसमें आप आवाजें सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गाने को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने। आइए ना आप और हम मिलकर सुनते हैं ये सुरीला गाना, और मुझे यकीन है कि इसके साथ आप भी गुनगुनाएंगे।

मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। जी हाँ दोस्तों, प्यार का रंग सच में बहुत गहरा होता है। जब कोई अपना ख़ास सामने हो तो हर गाना दिल को छू लेता है। और आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर फिल्म संगीत में गाने वो जो आपके सीने में धड़कते हैं। चलिए इसी माहौल को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं एक पायदान और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हिम्मत फिल्म का ये गीत। लिखा है समीर ने, इस पर धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। इस गाने के साथ आप भी गुनगुनाइएगा, आपके होठ जो हैं वो जरूर थिरकेंगे।

क्या करूं कुछ जाने ना, साथिया बिन तेरे ये दिल माने ना। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी धड़कनें किसी ख़ास का इंतज़ार करती है तो ये गाना जो है ख़ुद ब खुद ज़बान पर आ जाता है, और उस पलों को हम याद करते हैं जब हमारा कोई अपना जो ख़ास है, जो दिल के करीब है, जो अब दूर है हमसे, उसकी याद सताती है। चलिए इसी रंग को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं अगले पायदान पर, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इम्तिहान फिल्म का ये गीत।

गीत लिखा है फैज अनवर ने। संगीत से सवारा है अनु मलिक ने। आवाजें हैं कुमार सानू और साथियों की। यकीन है कि इस गाने को भी आप चाहेंगे जरूर।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। गाने वो जो आपके सीने में धड़कते हैं। लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में साजन चले ससुराल फिल्म का ये गाना।

गीत लिखा है समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं।

जी हाँ साथियों, ना तो हम धोखेबाज हैं और ना ही हम किसी बात को भूलते हैं, और हमें याद रहता है कि आपका मनोरंजन हमें हमेशा करना है। और इसी कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में एक बार फिर से समीर का लिखा हुआ गीत।

गाने वो जो आपके सीने में धड़कते हैं, हमेशा आपके मनोरंजन के लिए तैयार। आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र सूर्य नगरी चैनल। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, और फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल।

जी हाँ साथियों, जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके लिए पूनम का चांद और घूंघट का चांद एक जैसा होता है। ये अपने अपने दिल की परिभाषा है और जिसको जो चाहे जैसे बदल सकता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा सीने में तड़कता है। आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाजों में हद कर दी आपने फिल्म का ये गाना। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है आनंद राज आनंद ने।

साथियों, आपका और दूसरों का जीवन अमूल्य है, इसे दुर्घटना की भेंट ना चढ़ने दें। इसलिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।

जो यातायात के नियमों का मान करेंगे सब उनका सम्मान करेंगे। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत। साथियों, लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंपा मेथी के गाए कुछ चुनिंदा लोकगीत।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंपा मेथी पार्टी के गाए लोकगीत।

0: लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंपा मेथी पार्टी के गाए चुनिंदा लोकगीत।
1: रगड़ रगड़ पग धोवती रे मेरी सारे।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोक कलाकार चंपा मेथी पार्टी के गाए लोकगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। साज आवाज और अल्फाज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा गजलें। ये पहली गजल मेहदी हसन की आवाज में आप तक पहुंच रही है।

जी हाँ साथियों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग, कुछ रिश्ते और कुछ बातें दिल में ऐसे बस जाते हैं जैसे वो कल की ही बात हो। लेकिन जब उनसे मुलाकात का एक अरसा बीत जाता है, समय गुजर जाता है, तो वो यादें ही महफिल सजाती है ना। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोश-ए-कदमे बज़्म चरागाह किए हुए। और

पुरानी याद हमें सताती है तो पुराने दोस्त जो हैं हमें याद आते हैं कि उस दोस्त को दिल का मेहमान बनाए हुए एक लंबा अरसा बीत गया है, वक्त गुजर गया है। अब तो बस ऐसा लगता है कि पुरानी महफिल की यादें ही उस प्यारे से दोस्त की चमक के साथ हमारे दिल को रोशन किए हुए हैं। तो इसी दोस्ती के भाव को अपने दिल में बरकरार रखिए और आज ही अपने किसी दिल के करीब आपके सच्चे दोस्त को, जो लंबा अरसा हो गया है आपसे मुलाकात किए हुए, उससे मुलाकात किए हुए मिले हुए, तो एक मैसेज ज़रूर भेजिए। इसी भाव को बरकरार रखते हुए सुगम संगीत में बढ़ते हैं अगले पायदान की तरफ और अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई ये गज़ल।

दोस्तों, इस गज़ल में प्यार की गहराई और इंतज़ार का बहुत ही खूबसूरत जिक्र था। लम्हों की जागीर लुटा कर बैठे हैं हम, घर की दहलीज पे आकर बैठे हैं। कभी कभी हम प्यार में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उस एक पल की खुशी के लिए हम अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर देते हैं, और फिर बस इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। सब कुछ लुटा के बैठे हैं हम, घर की दहलीज पे आकर बैठे हैं। सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। लीजिए, बढ़ते हैं एक पायदान और आगे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल। कलामकार हैं गुलजार।

साहिबान, आपने किसी के चेहरे को कभी गौर से देखा है? जी हाँ, किसी का चेहरा इतना साफ और खूबसूरत हो जैसे कोई आईना हो जिसमें हूबहू हमारा अक्स दिखता है। कई बार उसकी आंखों में सपने दिखते हैं, उम्मीदों के, उसका भविष्य दिखता है उसके नूर में, और उसको देखकर लगता है कि यही मेरी रूह है, मैं इसमें हूँ और वो मुझ में है, ये मेरा अक्स है। कई बार ऐसा होता है। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और इसी फ़लसफे को बयां करती ये गज़ल जगजीत साहब की आवाज़ में आप तक पहुँची। कलमकार थे गुलजार साहब। सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। लीजिए बढ़ते हैं एक पायदान और आगे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई ये गजल। कलमकार हैं खाकिल शिफाई। आइए आप और हम मिलकर इसका लुत्फ उठाते हैं।

0: बाकी सब गंगा।
1: जी हाँ दोस्तों, खूबसूरती की तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन जब अल्फाज गजल के हो तो बात कुछ और हो जाती है ना। और जब ये सुर कानों में पड़ते हैं पंकज उदास साहब के, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू हो गया हो। लेकिन जादू होता है। रेडियो स्टेशन पर सिर्फ आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देशवासियों के जीवन को अधिक सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पहल देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेंस से प्रशासन और जनसेवाओं की पहुंच में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और यूपीआई जैसी पहलों से आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सिक्योरिटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में एआई और मशीन लर्निंग एआईएमएल नीति लागू की गई है, साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल जन शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवाओं तथा राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम

0: नियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए हादसे की विस्तृत जांच के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल का गठन किया है। जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने दल को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज अल सुबह धनावड़ा के पास एक स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से बस में सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। मॉनसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्य जीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन हो सकेगा। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया भी पर्यटकों के लिए बंद होगा, हालांकि बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हुआ पर्यटन सत्र कल समाप्त हो गया। बीते पर्यटन सत्र में 6,77,000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया, जिससे राज्य सरकार को लगभग 70 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाया, आपा खेती बाड़ी रजी का काम काज है वे आपा करा और आपानी कोशिश आई रहे कि भाई आपा खेत रे महीने जिको अनाज खरीफ रे महीने भावा, बाजरो भी भावा, गवार भी भावा, मूंग भावा, मोड भावा, तेल भावा, इनके साथ साथ आपा फसल चक्र अपनावता थका आपा खेती करा। ज्यो लाल दान मान लो खेत्र में आप बाजरो लिया तो हमके आपा मूंग बादा, बाजरो लिया तो हमके आपा मोट बादा, गवार लियो तो उठा आपा बाजरी बादा। तो कोशिश अपनी आ रहे कि आपा अदल बदल ना आपा खेती करा और क्या है कि भाई गवार आपा खेत में

0: आदा तो बढ़िया खेत अपने पाछो हुदर जा कि तो मोड़ो मिट्टी वे तो गवार बावणो फाची उपजू जा इंड हाथे मोठ है मूंग ए बावा तो उनसो भी आपानी जी की मिट्टी है अच्छी होवे
1: और
0: बाजरो भी आपा लेवा। आज आपने जानकारी दी रहा कि भाई आपा मूंग की खेती करनी चाहवा तो उन्नी जी की खेती है आपा किन तरह से कर सका। मूंग एक दलहनी फसल है और खरीफ री फसल आ मानी जाए मैं वही आपा मूंग घने भाव मूंग रे दाना रो जी को इस्तेमाल है वो दाल रे रूप रे महीने आप करी जा करे और इन महीने 55% कार्बोहाइड्रेट 24% प्रोटीन और 1.3% जी की वसारी जी की मात्रा है आ मूंगा रे महीने होया करे। इंडे हाथे आते आपा भी देखो मूंगरी दाल आप प्रयोग करा इंडे हाथे आते फलिया जी की है वे काची आपा खावा मूंग री दाल रे महीने पर्याप्त मात्रा रे महीने पोषक तत्व मौजूद हुआ करे। इन वास्ते मार्केट रे महीने इनरी मांग जी की है वह भी अधिक दिया करे। किसान भाई मूंग री आपरी खेती करे और बढ़िया लाभ जी को आप कमावे। हम बात आवे कि भाई आपा मूंग री खेती करनी चाहवा तो कैडी मिट्टी होनी चाहिए जलवायु किन तरह री होनी चाहिए तापमान किकर होनो चाहिए। मूंग री खेती सगले प्रकार की मिट्टी में आपा कर सका। खास बात आ है कि जी की बलुई दोमट मिट्टी है वह मूंग री खेती रे वास्ते बहुत बढ़िया मानी जा करे। जल भराव वाली जी की मिट्टी है भूमि है उन्द्र महीने अपने मूंगरी खेती नहीं करनी चाहिए। क्यों मतलब वो जी का खेत नीचा है पानी मान लो भरी जा वोटे अपने मूंगरी खेती भी नहीं करनी चाहिए। आजकल अपन देखा कई जी की हड़का है वे भी घनी ऊंची ऊंची आएगी है उन्द्र आड़ पाड़ जी का खेत है थोड़ा नीचा रहेगा है कई दान पानी जी को है डाल रूप रे महीने अपने खेता में भरी जा कर जा तो वोटे अपने कोशिश आ करनी है कि भाई जटे पानी भिड़ो वे वोटे अपने मूंगरी खेती नहीं करनी चाहिए। मूंगरी खेती रे वास्ते भूमि रे जी को पीएच मान है वो 6.7-7.5 के बीच में होना चाहिए। मूंगरी जी की आ फसल है खरीफ और रबी दोनों मौसम रे महीने किसान भाई आप रे करे और रबी रे महीने जटे अपने सिंचाई की व्यवस्था वे बेरा वे ट्यूबवेल वे नलकूप वे वोटे आप रे बावे और हमें जो चौमास है तो इन महीने किसान भाई आप रे घनी फसल बाई रटे सिंचाई की जरूरत भी पड़े को मैं घणी हुई और मूंगरी जी की पैदावार है आ भी बढ़िया हुई और मूंग जी का है हल्लो हल्लो जी को तावड़ो है तापक्रम जिन्हें आप कह वो 40 डिग्री तय आप सहन कर ले। हमें बात आवे मूंगरी जी की उन्नत किस्म है वे किसी किसी है लाल प्रोग्राम में आप जानकारी दी रही कि भाई मूंगरी किसी किसी किस्म है उनकी पकावा अवधि कितना दिनारी है उत्पादन किन तरह हुए। आज भी आपने जानकारी दी रहा कि भाई इन जी की उन्नत किस्म है जी बात करा RMG 62 है असिंचित और असिंचित दोनों खेतर में आप ले सका। कई किसान भाई ने मान लो जी हमें नलकूप है तो वे आप किस्म काम में ले सके मैं छाट मान लो ऊपर नीचे वे या आगे लारे वे तो वोटे आप सिंचाई भी कर सका। इनने किस्मरी जी की फलियां है ए लंगे टंगे 60-70 दिनार महीने लाग जाया करे और एक खास विशेषता है कि जिको फल छेदक रोग वे उनरू आ किस्म रहित वे करे और 1 हेक्टर जिको उत्पादन है वो लंगे टंगे 8-10 क्विंटल तय हो जाया करे। मूंगर महीने बात करा RMG 344 भी किस्म है अभी खरीफ और जायद महीने उगा सके किसान भाई और कोशिश आ करा कि भाई जटे सिंचित क्षेत्र है अपने उटे भी आ किस्म आप बा सका और 65-70 दिनार महीने इंडी जी की पैदावार है तैयार हो जा आपने फलियां पाक जा बढ़िया बीज लाग जा प्रति हेक्टर उत्पादन निपात करा तो 9 क्विंटल आड़ पाड़े इन किस्म से उत्पादन हो जा। पूसा विशाल भी है आ बात करा तो भारत राज्य का अपना उत्तर राज्य है गर्मिया रहे मौसम महीने उगाई जा करे बीज को रंग इनो है गहरो हरो और चमकदार वे इंडी जी की फलियां है लंगे टंगे 60-70 दिन में आप पाक जा और पीली चित्ती नामक जो रोग है वो इन महीने नहीं ला गया करे। इनके समूह जो पैदावार है वह 12 क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाया करे। इन रहते आते अपन जो अपा मूंगर किस्मा की बात करा उन्नत किस्मा है जो टाइप 44 है K851 है GM4 है Ganga 8 है RML 668 है पूसा वैसाखी है पांच बातरी किस्मा है और किसान भाई आप रे नेरी नेरी जलवायु रे हिसाब से और आपरी मिट्टी रे हिसाब से पैदावार आप ले सके। हमें बात आवे है कि भाई आप मूंगरी खेती करनी चाहवा और किसान भाई खेतरी तैयारी जी की है वह किन तरह करे तो मिट्टी ने बढ़िया आपा भुरभुरी बना ला खेत बढ़िया तैयार करना बहुत जरूरी है। बाउन पहला खेत तैयार करे आप रे बढ़िया गोबरी जी की खाद है वे आप देवा और बढ़िया बाद महीने आडा उबा उमरा आपा फाची कल्टियों बावा बढ़िया आप और भुरभुरी उजावन वगैरह आप बीज जी को है छाड़ दा बढ़िया महीने और मूंगर महीने उर्वरक देवनो भी बहुत जरूरी हो जा। यू तो आप बात करा कि भाई पौधा जी का है खुद ही जमीन में नाइट्रोजन की पूर्ति आप करे गोबरी जी की खाद है पुरानी आपनी बिना आप उर्वरक रूप में महीने 10-15 जी की ट्रैक्टरी टोली है आप प्रति हेक्टर हिसाब हूँ आप खेत में दे दा इन रहते आते कटी मान लो मिट्टी अपनी कमजोर है तो बूटे अपने खाद देनी बहुत

जरूरी हो जाए करे। और हमें जो प्रसाद री ऋतु रही और किसान भाई आप रे मूंगा रे बीजा री रुपये करी और रुपये पहला अपने एक काम करना है कि बीज ने उपचारित करना अपने काम लेना है। थायरम या कार्बन डाइजीम उपचारित करना आप बढ़िया उचित मात्रा और बाद महीने आप बढ़िया बीजा री रुपये कर दा। और हमें यू खरीफ री मौसम रे वास्ते आप बात करा तो जून और जो जुलाई रो जो महीनो है बहुत ही बढ़िया मानी जा करे और आप उत्पादन लेवा। मूंग रे बीजा री बुआई करा तो आप पंक्तियारा महीने करा और इन वास्ते अपने ओ करना है कोई एक ले डेढ़ फीट री दूरी आप राखता थका पंक्तिया बढ़िया तैयारियां करा। आप बीज री जी की रुपये चार सेंटीमीटर की गहराई में करा और 10 ले 15 सेंटीमीटर की दूरी रखा तो बहुत ही बढ़िया रहे आपरे पौधो जी को है बढ़िया फैले फलिया भी बढ़िया आवे। किसान भाइया आ ही जानकारी कि भाई आप मूंगरी जी की उन्नत खेती है वह आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणे जाने सीख दिराओ। राम राम।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज और FM बैंड 102.1 मेगा हर्ज पर। दिन के 1:15 हुए हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गणगौर।

0: गणगौर कार्यक्रम सुनण वाला सगळा हेताळू श्रोतावानी घणीमान राम राम और हार्दिक अभिनंदन श्रोतावा वेगो है दोपहर रू बखत आपन इन कार्यक्रम रो बखत आपरे सामी राजस्थानी गीता और राजस्थानी बाता रो ओ आपरो मन मोहणो कार्यक्रम लेर हाजिर हूँ मंजू चारण और मारे साथे आपारी एक और मुलकती सखी पूनम। तो पूनम जी आपने भी राम राम।
1: बिल्कुल मंजू जी, आपने भी मारा घना घना राम राम और गणगौर कार्यक्रम सुनन वाली सगली सखिया ने भी घने हेत प्रीत सुभर्योड़ा राम राम।

0: તો મંજુ જી, ઇન ગીત સાથે સખિયાને બી સંદેશો ભીજગ્યો હોય કે ભાઈ ગણગોર કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ ગઈ, તો આ જાઓ આજ રી અપાણી જો બનતળ એવા સુણન વાસ્તે. ઓર આપણે વાત કરા આષાઢ મહિને રી, તો આષાઢ મહિને રો સંદેશ રી વાત કરા તો આપણા જીકા બાદળ એવે બી વરસાદ રો સંદેશ લઈ રહ્યા કરે, ક્યુંકિ ઇન મહિને સુઈ જ બિરખા રત્રી એજી કી શરૂઆત હો જાય કરે. લૂ રે થપેડા સુ પરેશાન મિનક પંખેરુ ઓર પશુ સગળા ઇન મહિને રે મહિને બાદલા રી બાટ જોયા કરે.
1: और आषाढ़ महीनों तो जदे भी लागे तो देखो जेठ तपती दोपहर हूँ अपन शांति मिले, क्योंकि हल्की फुल्की फुहारा जद धरती माते पड़े और इनी जकी वा पहली मिट्टी री सोंदी सोंदी सुगंध आवे वो अपने ये ने कितो मोया करे है.
0: बिल्कुल सही कह मंजू जी. और राजस्थान री अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन खेती माते टिक्यो रहे, तो आषाढ़ महीनो आवता है किसान भाई खेत सवारण लाग जाए करे, और इन महीना में ज्या ही पहली बरसात होवे तो किसान खेत महीने हल जोतनी शुरू कर देवे. आषाढ़ री बोवणी ने जिको सबसे चोखो मान्यो जावे. और आपने अठे तो कहवत भी है कि आषाढ़ सुधी नवमी दिना जोगट छोद में काळो कूकर खा गयो चित में राखो ने, मतलब आषाढ़ रे चांद ने पगरी नम ने जे आभे रे मैने घटा को बादल छा जावे तो समझो कि अकाल दूर भाग गयो है, और किसान खुश हो जावे क्योंकि चौमासो घणो चोखो है जिको होवेला.
1: बिल्कुल, इन तरह री एक कहावत और भी है कि आषाढ़ी पूनो दिना गाज बीज बसंत नाशे लक्षण काल रा आनंद माने संत. आषाढ़ रे

0: नारी पूर्णमासी ने अगर आकाश में बादल गरजे, बिजली चमके और तो बरसात है पा घणी चोखी विया करे, तो सब हरक सबने तो रही है। इन साथ ही देखो कि स्कूल शुरू रहना रा भी यही दिन है और साथ ही खेती रा शुरुआत रा भी यही दिन है।
1: बिल्कुल सही क्यों। और इन महीने महीने मोरिया भी बोले, कोयल भी कूके और ग्रामीण अंचल रियापड़ी जितनी भी सखियां हैं वे बरखा ने रिझावण सारू, बादला ने बुलावण सारू मल्हार और चौमासारा लोकगीत है जिको गाया करे। बादला री गड़गड़ाहट और बिजली री चमक सु अपनो हिवड़ो जिको है वो एकदम हुलसित हो जाया करे। और आषाढ़ री बिरखा जुई धरती माते पड़े तो चारों मेर हरियाली है जिको छा जाया करे और
0: बिल्कुल
1: नित नया पौधा है जिको उग जाया करे और फूल है जिको चार चांद लगा दिया करे।
0: बिल्कुल, जीव की हरियाली है वह देखने में आंखिया ने इतनी ठंडक प्रदान करे है कि इनो आपा अच्छे उम्मे तो जान सका। हाँ,

0: देखो पूनम जी, दिन चाल रहा है। अबार अषाढ़ आज उमीनो लागो अषाढ़ और अषाढ़ महीना में देखो बरसात गणी रहे, हरियो भरियो तो रिये ही करे। साथ ही अबार अपा गाणू सुनियो के बिछुड़ो तो बिच्छू खाई जावे या सांप खाई जावे, आठ दिना में देखो ज्यादातर रिया करे, पेड़ पौधा में जावे बच्चा। तो आप सब पहले किन कने जाओ डॉक्टर कने, और आज है 1 जुलाई, 1 जुलाई रा रिया करे हमेशा डॉक्टर्स डे आपा मनाया करा। तो ओ डॉक्टर डे मनाना रो समू भाई जरूरी, ओ यूं है कि आप डॉक्टर ने सम्मान नित करा आपा लोग, क्योंकि डॉक्टर समाज रे मायने स्वस्थ और चिकित्सा रो आधार विया करे। भगवान के पछे अगर आप रे जीवन रो कोई रक्षक है तो वह है डॉक्टर।
1: बिल्कुल सही क्यों मंजू जी, डॉक्टर धरती पर भगवान रो ही रूप होया करे, और भगवान तो अपने एक बार जीवन देवे, पर डॉक्टर अपने जी की अमूल्य जान है। बार बार कोई भी तरह की बीमारी इवेंट सु बचाने अपने बार बार है जी को जीवन दान देवे। और दुनिया रे मैंने ऐडा कई उदाहरण है जटे डॉक्टर भगवान सु भी बढ़ने काम करियो है। बच्चे ने जन्म देनो हो या किनी वृद्ध ने बचानो हो, ऐसा सगला काम डॉक्टर है जी को बहुत ही आसानी सु कर लिया करे। और एक ऐडो पेशो है जटे दवा और दुआ दोनों ही रो संगम है जी को देखने मिले। महामारी रे समय तो डॉक्टर आपरी जान ने जोखिम में डालने लोगों की रक्षा करी। आप देख ही हो कि कोरोना रे समय डॉक्टर आपरी जान दाव पर लगाने जी के जितना भी कोरोना महामारी से जूझ रहा था वैन सबारी इलाज कर रहा था। और डॉक्टर कने अगर आप जावा और डॉक्टर आपरी थोड़ी सी मुड़कती हंसी अपने दिखा देवे तो आधी बीमारी तो अपनी यू ही खत्म हो जावे डॉक्टर और मुंडो देख नहीं।
0: बिल्कुल, आ तो एकदम सही बात की, क्योंकि दवाइयां तो सिर्फ बीमारी रो इलाज करिया करे, पर डॉक्टर का मीठा बोल और मुस्कान है वह मरीजा ने ठीक कर दिया कर। इन्हें साथ ही देखो कि मरीजा की जान बचाने के खातिर

0: तो मंजू जी, यू भी अपन बहना बहुत चुतर है। खरीदारी मामला में बात करानी तो कटे लारे नहीं रहे। कोई भी चीज ठोक बजान लेवे, और
1: बिल्कुल
0: मोल भावरी तो बहुत ही पक्की है। कोई भी चीज ज्यादा पया दे, मतलब जितना है नी, विमे भी कम कराने की कोशिश करे हमेशा।
1: कटे ही जाओ हमेशा। आइज रिया करे एक बार्गेनिंग करिया बिना तो कोई चीज अपन नहीं खरीदा।
0: पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, हमेशा पक्को बिल लेना नो, ताकि उन बिलू आप कदे भी कोई चीज कोई भी खराबी आ जावे तो आप बिलू है जी को बिन महीने आप कंप्लेन कर सका। और भी मैं पूरी डिटेल दियोड़ी रहे कि आप कितो तो टैक्स कटियो है, कितनी मूल कीमत है उन्हें चीज री, तो ऐसा चीज अपन ठा रहे। तो आज
1: बिल्कुल
0: आप ये बात क्यों कर रहे हैं?
1: आज अपा इन वास्ते करा क्योंकि आज है 1 जुलाई और आज रे दिन जीएसटी दिवस भी मनाया कर रहा है। क्योंकि इन ही दिन 2017 मायने वस्तु सेवा कर ओ लागू भी हो और इन लगाना रो कारण भारत सरकार अपने अठे आर्थिक सुधार करियो सबों बड़ो एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार रे नारे रे साथ है ओ देश भर में लागू करी जो हो।
0: बिल्कुल। और इन दिन ने मनावन रो मुख्य मकसद कर व्यवस्था में आया बड़ा बदलाव ने रेखांकित करना और व्यापार ने नवी व्यवस्था के प्रति जागरूक करना भी है। जीएसटी सु पहले देश रे महीने कई तरह का टैक्स लगता, जिया वेट हो गयो, एक्सरसाइज ड्यूटी होगी, सर्विस टैक्स हो गयो, ऐसा लगता जिन्हें हटावन सारू और एक मोटो कदम हो। और इन सु हथकरघा है, हैंडीक्राफ्ट है, वन सब व्यापार ने देश रे दूजा राज्य रे महीने माल बेचनो बहुत ही आसान हो गयो और
1: बिल्कुल
0: राज्य रे राजस्व रे महीने भी बढ़ोतरी हुई। पहली कर माते कर लाग इन सु चीजा महंगी होती और जीएसटी सु टैक्स माते टैक्स है जिको खत्म वेगो। और रिटर्न भरने सु लेट, टैक्स जमा कराने तक रो जो भी काम है वो सब ऑनलाइन होने सु भ्रष्टाचार रे मायने भी कमी आई और पारदर्शिता होगी। मतलब ग्राहक ने ठा पड़ जावे कि वो कितो टैक्स है जिको चुका रियो है। तो मतलब ऐसा चीजा है जिको जीएसटी आया सु आसान होगी है।
1: बिल्कुल। और आपकटे यात्रा या परिवहन भी करता हा तो आर्थिक रूप वो एक सुव्यवस्थित ढंग रेगो के हर जगह एक तरीका की कीमत है एक जेड़ी कीमत है। और इन साथ ही पारदर्शिता तो आपके वो जूं बड़ी ही है क्योंकि ज़्यादा टैक्स कोई ले नहीं सके तो ग्राहक भी दुकानदार है वो भी अपन लूट नहीं सके। पूनम जी आप एकदम सही बात की। और दैनिक जीवन रो जो को अपन रोजमर्रा रो रसोई रो सामान हो या और कोई सामान वो टैक्स फ्री भी कर दियो काफी हद तक। तो देखो कि ज्यों की आटो है दूध है पनीर है ए अपन रसोई सामान लाओ तो उनमें जीएसटी शून्य लगभग है।

0: गेणो तो देखो गेणा री बात चली इन गाना में, और गेणो तो हर के नी लुगाई रो सब महत्वपूर्ण वो रिया करे शौक। अगर जड़ तक बा गेणा नहीं पहने नहीं, जड़ तक भी लागे कि भाई नहीं कहीं नहीं करियो है। तो आज आपने बताऊँ एक एडी कला री बारे में जेकी आपरे गहना ने बहुत सुंदर और आकर्षित बना दिया करे। इनू नाम है मीनाकारी। मीनाकारी की शुरुआत पर्शिया ईरान से हुई ही, लेकिन मुगल काल में आकला भारत आई, जने राजा मान सिंह पर्शिया रे कारीगरा ने जयपुर ले आया और जने जयपुर बनगो मीनाकारी री राजधानी। सोने माथे रंगारी नक्काशी और शीशे रे पाउडर बनी उड़ा ए चमकदार रंग और कारीगरा रे हुनर रो बेमिसाल संगम है आ मीनाकारी।
1: बिल्कुल सही कहो मंजू जी, जयपुर ने इन कला रो सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र मान्यो जावे, और एक ज्यादा श्रम वाली और जिनमें उच्च स्तरीय कौशल की जरूरत हो वाह वाली कला है। सबसे पहले तो सुनार या कारीगर जी को हो वो धातु रे आभूषण पर सुंदर फूल पक्षी या कोई भी आकृति हो वह बनावे, और उकेड़ या खाचारे मैंने कांच रो पाउडर या खनिज पदार्थ ने कोई धातु ऑक्साइड रे साथ पिघला ने इन रे मैंने भरे, और धातु ने भट्टी रे मैंने गर्म करे जिनसे रंग पिघलने धातु री सतह पर पक्को तौर पर है जिको जम जावे, और ठंडा होया पर टुकड़ा ने घिसे जिनसे चीकनो हो जाए करे ताकि रंग है जिको इना उभर ना आवे। और सोनारी जी की मीनाकारी वह सबसे टिकाऊ और चोखी मानी जावे, जिनरे मैंने लाल हरा नीला ये सब रंग रो है जिको प्रयोग करियो जाए
0: और
1: करे।
0: एक आसमानी रंग अपने मीनाकारी में बहुत ज्यादा
1: सुंदर
0: अपन जी
1: लागे।
0: देखने मिलिया करे। इन्हीं तरीका उन चांदी री मीनाकारी है वह नाथद्वारा और प्रतापगढ़ में करी जाए है, और एक गुलाबी मीनाकारी रिया करे वह उत्तर प्रदेश रे वाराणसी में। आ गुलाबी मीनाकारी आपरी अलग ही इनी पहचान है। इनू देखो अपन आभूषण बने, तलवारी मूठा बने, सजावटी बर्तन बनिया करे, और भी चूड़िया गहना तो जितना भी है आनमान मीनाकारी रो काम रिया ही करे है।
1: बिल्कुल मीनाकारी सु गहना री चमक जी की वह और ज्यादा उभरना है और बहुत ही सुंदर लागे गहना पहरी उड़ा भी।
0: और अगर सोने

0: ଆକାଲା ତେଲଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ୟାଦଦ୍ରି ଭୁବନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧାନ ପୋଚମ୍ମଲି ଅର୍ ଉନ୍ରେ ଆସପାସରେ ଗାଁରେ ମାଇନେ ସଦିଆସୁ ପନପ ରହିଏ ଅର୍ ଇଣେ ପୋଚମ୍ପଲ୍ଲୀ ଇକାତ ୟା ପାଗାଡ଼ୁ ବନ୍ଧୁ ବି କହିଆ କରେ ହେ। ଇଣ୍ଡ୍ରି ସଗଲାସୁ ମୋଟି ଖାସିୟତ ଆଏ କି କପଡ଼ୋ ବୁଣବାସୁ ପହେଲି ଧାଗାନେ ବାନ୍ଧ ରଙ୍ଗ୍ୟୋ ଯାୟା କରେ ହେ।
1: बिल्कुल। और बुनाई शुरू एवं पहली हर रंग ने अलग रंगी जा करे है, जिनसु रंगियोड़ा धागा है वे अविश्वसनीय सटीकताओं छिपियोड़ा पैटर्न इन मायने हामी आवे। हासु बनियोड़ो हर कपड़ो यूं तो अद्वितीय रिया करे पूनम जी, पर देखो जोको अपारे सदाबहार है अपन अठे उन्हीं तरीकों उन कपड़ा माते भी डिजाइन बनाई दिया करे। डिजाइन के माध्यम तेलंगाना की समृद्ध विरासत ने दर्शावे है। पोचमपल्ली एक भौगोलिक संकेत करीजन आड़ो पहलो हथकरघो है भारत रो, जको कौशल और परंपराओं बनी विरासत ने सहेज राख रियो है। डबल इकट उन ताना बाना दोनों जका प्रकार है बांसू धागा रे डिजाइन रे अनुसार अलग अलग रंगू रंगी जाए और जद आने बुने तो आकर्षक पैटर्न बन आपन सामी आवे। इन साथ ही अगर देखा तो इना किनारा वे नहीं वे बड़ा धुंधला भी आ करे, क्योंकि आनी एक पहचान है कि डिजाइन थोड़े धुंधले जो अपने पाखड़िया नहीं भी आ करे यूं हल्का के लो किनारा भी आ करे, जकाऊ पतो चाले है कि भाई आहास सुन रंग्योड़ी है फैब्रिक है वो शुद्ध सूती रेशमी मिश्रण और अन्य फैब्रिक माते भी आजकल बनाई जावन की। और इन्हें देखो आप बड़ी महंगी भी क्या करे पूनम जी, क्योंकि वो हाथ रो काम है।
0: बिल्कुल सही क्यों, और चट्टक और प्राकृतिक रंग और इनमें ने उपयोग होया करे। और साल 2004-05 में मैंने इन कला ने जीआई टैग भी मिलियो और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पोचमपल्ली गांव ने सगड़ा सुफूट रो पर्यटन गांव घोषित कर रखियो है। इन गांव ने भारत री सिल्क सिटी भी कह करे और आज पोचमपल्ली री साड़ी और कपड़ा सिर्फ भारत रे मायने नहीं बल्कि पूरी दुनिया रे मायने फैशन रे वास्ते मान्या जाया करे।
1: हाँ, और इनू तौलिया है, रुमाल है, साड़ियाँ है, कुर्ता है, दुपट्टा कह दो, घर्रा पर्दा कपड़ा, आजकल हैंडलूम रा कई तरीका रा सामान है, सब तरीका रा अपन अट उपलब्ध है। तो आप भी जरूर खरीदन लाई जो, मैं भी लाऊंगा। इन साथ ही सुनाए गीत।

0: अंजू जी, पहले जद हिचकी हाल थी, पहले की हिचकी तो अभी भी हाल ही है। जद कई कहवे कि कोई याद करे जना हिचकी हाल है, तो कहवे कि पानी पी लो जी को हिचकी बंद हो जाई। देखो याद करे जना अपन भी नहीं ओड़ू आवे कि काश वो अपन हम ही होता तो अबार अपा भी बाता कर लेता। कणी कणी तो इतनी याद आवे कि मतलब मिलने मन करे, पर आगो बैठे हो जने तो अपा मिल नहीं सका। पर अभी तो इतनी सुविधा होगी कि अपा फोन रे माध्यम से वीडियो कॉलिंग करने भी उन्होंने चेहरों देख सका, उन्होंने बात कर सका, फोन माते बात कर सका या मैसेज करने बात कर सका। तो अभी सोशल मीडिया रो हुक होगी अपने जीवन रे मायने।
1: बिल्कुल आपकी यो बात एकदम सही। अपन विदेश में बैठो रहो, अपन भाई बहन भी यूं ही लागे कि पाड़े बैठो बातें कर रही हो है, आराम हो अपन। और आप बात करी अगर सोशल मीडिया रही, तो देखो सोशल मीडिया तो एक ऐडो माध्यम है जिनसो अपन कई तरीका री सुविधा मिल गई है। जो आजकल हर जने खने तो फोन रोकन गुणियों तो देखने मिलिया ही करे, तो आप इनो सही तरीका अगर इस्तेमाल करो हो तो अपने कई तरीका रा फायदा वे। आजकल हर जनो सोशल मीडिया चलावे, ये तो इनका फायदा तो देखो बहुत ज़्यादा है। आप अरी घन करी साथणिया है बे भी आजकल सोशल मीडिया चला रही है, जगह वे घर बैठी अपने हुनर ने एक अलग पहचान देवन रो भी काम कर रही है। सोशल मीडिया महिलाओं वास्ते सशक्तिकरण और जागरूकता रे काम तो करियो ही है, साथ ही आपनो इनो बेहतरीन साधन है आपरी कला ने आगे पहुंचावन रो। पर इनमें जोखिम भी घना है पूनम जी।
0: बिल्कुल सही कहो मंजू जी। अगर कि नहीं फायदा है तो साथ साथ नुकसान भी है, कुछ ना कुछ हुए है। तो इन फोन रे मैंने भी अगर आप बात करा तो बहुत सारा फायदा अपन आया, पर नुकसान भी है। तो अपन ध्यान मतलब बड़ी सावधानी के साथ है जी को कई बात रो ध्यान रखने उपयोग करना चाहिए।
1: ज्यों की कही अपनी बहना है भी रोजगार और व्यापार वास्ते अगर वो चला रही है तो घर बैठा वो चैनल आप रो चैनल बना सको हो, आईडी बना सको हो और आप रे हुनर ने लोगों तक पहुंचाओ। जैसे कोई ब्यूटिशियन री कोई बुटीक खोल दिया है या हाथ री कारीगरी है वो उन आप रो हुनर दिखाना चाहे, इन्हें साथ ही जागरूकता और शिक्षा वास्ते भी देखो सोशल मीडिया बहुत ही उपयोगी सिद्ध भी हो है, क्योंकि कानूनी अधिकार है, स्वास्थ्य री जानकारियां है, योजना वाली जानकारियां अपन घर बैठा मिल जाया करे। इन्हें साथ ही अपन देखा कि चलावा हाँ तो अपने इन्हें सुरक्षा वास्ते कई उपाय है वे भी ध्यान में रखना चाहिए। और वे यूं है कि जैसे आप रेखने सुरक्षा रा कई फीचर्स आप रे मोबाइल में अवेलेबल है तो उन्हों आप प्रयोग जरूर करो। अगर आप आईडी बनावा हाँ तो इन प्राइवेट रखो, ओपन नहीं रखनी है।
0: बिल्कुल सही क्यों। और आपने कोई भी आपका फोन नंबर है, आपकी बैंक डिटेल है, आधार कार्ड है, कभी भी सोशल मीडिया माते आपने नहीं डालना चाहिए। और कोई भी अनजान व्यक्ति रे अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने आ रही है तो बिना सोचा समझे आपने वह फ्रेंड रिक्वेस्ट की है एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया अकाउंट रे जिका पासवर्ड है वे भी कई लोग हो जी का आपने जन्मदिन माते गाल देवे, कोई आपने नाम रहे जी को पासवर्ड डाल देवे, लेकिन नहीं आपने कोई भी एडो पासवर्ड नहीं डालना है। आपने कोई अक्षर है कोई सिंबल है इन तरह का पासवर्ड है वे आपने अपने सोशल मीडिया पर डालना चाहिए ताकि कोई भी तरह करो आपने नुकसान नहीं पहुंचे, हैक नहीं हो सके आप अकाउंट। और आप कठे भी जाओ आपरे परिवार साथ जाओ तो वह जानकारी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए। आपरे परिवार की कोई फोटो है आपरी कोई फोटो है वह भी सोच समझने सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करनी चाहिए आपने।
1: बिल्कुल, क्योंकि आपरी निजी तस्वीर है आनो दुरुपयोग भी जाया करे, इन वास्ते आपरी गोपनीयता ने इनू खतरो भी आ करे। साइबर फ्रॉड आजकल खूब तरीका रा रिया करे, तो उनो आपन ऑनलाइन शॉपिंग में महिलाओं आसानी उठगी जे पूनम जी। आप कहीं करिया करे ज्यादा ही पार्सल मंगावा हर बार दिखा तो इन माने शिकार वो बहुत ज्यादा वे, क्यों कई बार अपन एडो कपड़ो मंगावा और कपड़ो बहुत हल्को सो रेडो निकल जावे पचा पपाचो को नहीं। पर आपने पूरी अगर जानकारी है तो ही आप मंगाओ ना, अन्यथा आप ढूंढी मंगाना चाहिए। इन अलावा देखो आपकी लोकेशन कभी भी कोई ने शेयर नहीं करनी चाहिए। इन माने कई एडा ऐप आवे जिका है वे बिल्कुल नहीं खोलना है आपने इन्हें, साथ ही देखो कि साइबर बुलिंग और उत्पीड़न रा शिकार या भद्दा कमेंट आ रहा है, आपने कोई धमकियां मिली।

देखो पूनम जी, बाता तो घड़ी है पर घड़ी रो भी आप रो एक नियम है और समय रही है न मर्यादा ने ध्यान में राखता थका। आज रे कार्यक्रम रो वक्त हो गयो है पूरो, तो लेला बेनाऊ सीख आपरी रेडियो से।

0: जी मंजू चारण
1: और पूनम देवरानंदी राव सीख। उनसे पहले सखिया ने बता दा कि आज अपने कंसोल पर जो गीत सुना रहा वे हा बलवीर सर, और जो कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन हो वो हो रामनिवास चोयल रो।
0: राम राम सा।
1: राम राम सा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ज पर दिन के 2:15 होने वाले हैं। समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है।

0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जीरामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली

0: और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagements
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है,
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की

0: रक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ।

0: वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो
1: जी
0: विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
1: जी
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी,
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो

0: श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
1: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
1: आह, क्या बात है
4: मैम।
1: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
1: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे

0: ये क्या आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
3: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
3: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी।
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे है ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई ये भी
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के एक

0: पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
2: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
3: मुखिया जी, मुखिया जी!
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
3: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि

0: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि...
1: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
0: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
1: तो भरने दो।
0: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
1: अरे तो जाने दो।
0: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
1: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
0: लेकिन मुखिया जी,
1: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
0: जी मगर
1: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
2: मुखिया जी,
1: अब क्या है?
2: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
1: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी, मुखिया जी,
1: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
1: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
1: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदलती है? हाँ, छत से देखता हूं मैं।
1: ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो... अरे ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह, मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
4: आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

साथियों, आपका और दूसरों का जीवन अमूल्य है, इसे दुर्घटना की भेंट ना चढ़ने दें। इसलिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दी।

0: बाजे लू इण बेग सूं चौसे जड़ तर सीर बेरिया ठम ठम बाजता हाले जी वदीर। सदरा इण गावत सो आपने लाग रही हो कि आपने परदेश है जो का बार बरसात री उड़ीक में बैठो है, बरसात रो इंतजार कर रो है, लू है जगी घनी तेज आल रही है, लेकिन अपना खेत अपना जल स्रोत आ बार बरसात री उड़ीक में बैठा है। मैं भी आप री उड़ीक में बैठा हाँ, आप रो स्वागत कर रहे हैं युवाणी रे निम्बोली खास फरमाइशी कार्यक्रम में। आज है बुधवार और आज भी आगरे राजस्थानी लोकगीता और भजना रो कार्यक्रम आपरे साथ है। मैं हाजिर हूँ आप रो रेडियो साथी देवी सिंह और आज हमारे साथ है
1: सदरा मैं आप रेडियो दोस्त रघुवीर सिंह।
0: सदरा प्रोग्राम की शुरुआत में आपने सुना हुआ चौकसो और राजस्थानी लोकगीत।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: आस नहीं बड़ी फरमाइशी कार्यक्रम। यदि आप ही माने आप रा लोकगीता वास्ते फरमाइश भेजना चाहो तो आप माने व्हाट्सएप नंबर माते मैसेज लिखने भेज दे रहा हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9143129368। साधना साथ ही साथ आपने मैं एक रास्तानी शब्द दे रही हूँ, उन आपने हिंदी अर्थ है जो को माने बताना है। हरियाणी कार्यक्रम रास्तानी कार्यक्रम में आप एक शब्द शामिल कर करा। आज रोज को रास्तानी शब्द है वो है आगोर।
1: साधना शुरू करा फरमाइश सरो सिलसिलो आज रे इन कार्यक्रम री आप पहली फरमाइश आपने लिख कर भेजी है गांव भोपालगढ़ सु। भेजन वाला रेडियो श्रोता है राजेश दूरिया, किशन, जय किशन, आरती, विजय और सोनाक्षी।

0: साथीरा अब आर आप बहुत ही चौकी राजस्थानी लोक रचना सुनी। अगली फरमाइश आपने भेज और आप साथ जुड़िया है भोपाल गढ़सू सुरेश मेघवाल भीदुसा पुरोहित।
1: बागपत उत्तर प्रदेश हूँ, आपने सागे जुड़िया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार।
0: भोपालगढ़ राजस्थान सु ही अपार साथ जुड़िया है धर्मेंद्र चीपा कपिल चीपा और पूजा परिहार।
1: गांव रोहिचा कला सु आपने सागे जुड़िया है जगदीश टेलर, दीपक, ज्योति, पूजा, सरिता, भावना और कार्तिक।
0: कलानौर सु अपार साथ जुड़िया है नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा।
1: अने सुनाओ चौकसो राजस्थानी लोकगीत।

0: साथियों अगली फरमाइश आपने लिखकर भेजी है वड़ी खैरा पंजाब सू। फरमाइश भेजने वाला रेडियो श्रोता है मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।
1: प्रताप नगर जोधपुर से आपने सागे जुड़िया है मनोहर चितारा, सरोज, पंकज, करण और अर्जुन।
0: लेह लद्दाख सू अपार साथे जुड़िया है राजेंद्र कुमार और यारा साथीगण।
1: गांव लोहगढ़ सू राजस्थानी लोकगीत वास्ते फरमाइश लिखकर भेजी है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज।
0: गांव चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बालोतरा सू अपार साथे जुड़िया है जगदीश भारती, विजय भारती, नरेश भारती और मलिता गोस्वामी।
1: पेपर सिटी से मैसेज लिखकर भेजियो है लुकमन राठौड़, मुमताज राठौड़।
0: खारिया खुर्द आडेल बाड़वेर सू अपार साथे जुड़िया है कमरा राम सारण, सतीश सारण, चंद्रिका सारण देवी, देवजी और अशोक सारण।

0: साथिरा अब और आप प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना सुनी। साथिरा आपने एक राजस्थानी शब्द जुड़ो हो आगोर, जगह साथी नया जुड़िया है वेण शब्द रो अर्थ मारे ताई भेज सके है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9419339359। नंबर एक बार फिर आऊँ सुन ले रहा वो 9419339359। इन नंबर माथे आप आपकी फरमाइश रे साथे राजस्थानी शब्द आगोरो अर्थ भेज सको हो।
1: साधारण एण वाइड भाषा के कार्यक्रम में आप राजस्थानी साहित्य भाषा लोकगीत लोक कथाओं के बारे में बात किया कर रहा हूँ। जहाँ कि आपने ध्यान है कि राजस्थानी वीरारी धरती है, संतारी धरती है, लोक देवतारी धरती है। राजस्थान रे साहित्य में लोक जीवन, संस्कृति, रीति रिवाज, वीरता, प्रेम और त्याग रो अनोखो मेल देखने मिले। पुराने टाइम से लेर आज तक चारण भाट संत और लोक कवि आपरी कलम और वाणी सू अपनी लोक परंपराओं ने जीवती राखी है। राजस्थान रे साहित्य में वीर रसरो घणो मेताव है। महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान और अनेक वीरारो यशकान आपाने सुनन खातर मिले है। उनारे पछे बात करा तो भक्ति साहित्य री तो मीराबाई जी री कृष्ण भक्ति ने और दादो दयाल जी री वाणी ने कुण भुला सके। इनरे सागे सागे प्रेम साहित्य, लोक देवतारी गाथावां और राजस्थान प्रदेश री अनेक बोलियां आपाने साहित्य में एक नई पहचान दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। आज रे टाइम में युवाओं ने चाहे कि आपा राजस्थानी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा बोला, किताबा पढ़ा, लोक कथावां पढ़ा, ताकि आपा सब इन साहित्य से जुड़ा रह सका।

0: छात्रा अगली फरमाइश पहुँचती हुई है, जोधपुर सूं, लिखन वाला है गिरधारी लाल विश्वकर्मा।
1: साधना अगली फरमाइश आपने भेजी है सादुल शहर जिला गंगानगर सु। भेजने वाला रेडियो श्रोता है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़।
0: गांव चैनपुरा तहसील थोरी मना जिला बालोतरा सूं आपने मैसेज लिखन भेजियो है जगदीश भारती और गोस्वामी।
1: सांगरिया फाटा जोधपुर सु आप साथे जुड़िया है सुरेश कुमार और प्रेम करवासरा।
0: गांव चांपा सरसू फरमाइश लिखन भेजी है प्रेम कुमार, लीला कुमारी, संतोष कुमार।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: आरबीआई कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साधना आप अरखाने फरमाइशा लगो लग पू रही है। घना ही सारा श्रोता है जका राजस्थानी शब्द रो अर्थ भी लिखर भेज रिया है। जका साथी नया जुड़िया है वाने एक बार राजस्थानी शब्द फेरा हूँ बता देवा। साथीना आपने राजस्थानी शब्द दियो हाँ आगोर। इन आगोर शब्द रो अर्थ यदि आपने भी आवतो हुए तो आप हाने व्हाट्सएप माथे जरूर भेजो।
4: साधना राजस्थानी माइड भाषा ऋण कार्यक्रम में मैं आपने एक राजस्थान रे शेर रे बारे मान जरूर बतावा। राजस्थान का शेर आपरी लोक परंपरा वास्ते, संस्कृति वास्ते बठारा किला, बठारी बावड़ियाँ, बठारी झीला रे, बठारा मस्थल रे कारण घना प्रसिद्ध है। आज आप बात करा राजस्थान रे एक एड़े शेर री जिकन आपा बावड़ियाँ को शेर कहवा। बिना आपा सिटी ऑफ स्टेवेल्स यानी कि बावड़िया रे शेर से नाम सूपी जाना। अरावल पहाड़ा रे बीच बछोड़ो एक ऐतिहासिक शेर जको आपरी संकरी गलियाँ, भव्य महल, प्राचीन किला सू पूरे देश में विख्यात है। पहाड़ी रे चोटी पर बणियोड़ो तारागढ़ किलो, कोई ऊंचाई पर बस्योड़ो सौरख सू कम को नहीं लागे। भेड़े भेड़े नज़दीक में बस्योड़ो बूंदी पैलेस, आपरी वास्तुकला रो पूरी दुनिया में लोहो मनवा चुक्यो है। 50 से ज़्यादा बावड़ियाँ हैं। रानी जी की बावड़ी अठे घनी प्रसिद्ध है। अठेरा रंग बिरंगा बाजार में जदि आप घूमा तो अपनी संस्कृति और लोक परंपरा री झलक साफ दिखने मिले। यदि आप भी राजस्थान रे इन शहर में कदी घूमिया हो, यदि आप घूमण रो प्लान है तो आप माने मारा व्हाट्सएप नंबर माते आप रो अनुभव है जो को जरूर शेयर करो। मारा व्हाट्सएप नंबर है 94133 29359।

साथियों अगली फरमाइश आपने लिख रहे भेजी है चेन्नई सो फिजनौड़ा रेडियो श्रोता है मांगीलाल सिरवी और यारा साथीगण यार साथे ही चांपा सर सु आप साथ जुड़िया है कोमल कुमारी प्रजापत और यारा साथीगण गांव गोसाई नगर सु आप साथ जुड़िया है पप्पू लीलावत परवीन प्रदीप लक्षित सरोज और सगड़ो लीलावत परिवार गोसाई नगर यार साथ ही खांडा फलसा मियाँ चौक जोधपुर सु आप साथ जुड़िया है अब्दुल हमीद चिपा रईसा बानो अब्दुल अहमद अब्दुल मुस्वीर आयशा बानो और फिजा

0: साथीरा आपने एक राजस्थानी शब्द यो हो आगोर। तालाब नाड़ी और कुएं रे चारों ओर री खुली जमीन जिनमें वर्षा रो पानी एकत्र हो और उन जलाशय में इकट्ठो होवे यानी जलाशय रे चारों ओर रे इन खुले भूभाग ने ही राजस्थानी भाषा में आगोर कहवे है। साथीरा अब इन कार्यक्रम रो वक्त हो रही है 28 पूरो। आपने बता देवा इन कार्यक्रम री प्रस्तुति किन ही राजेश लामरोड में आपरे साथे हा दो रेडियो साथी मैं रघुवीर सिंह और मारे साथे हा
1: मैं आपरो साथी देवी सिंह साथे माने दे रहो सीख राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। शाम के 6 बज रहे हैं। प्रस्तुत है समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को

0: ब्रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साह ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The government today approved the construction of a 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
0: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड।

कार्यक्रम विवरण में पहले एक नजर आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर, फिर कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी।

पहले आज प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। शाम 7 बजे सजेगी चौपाल, 8 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

साहित्य सुधा कार्यक्रम में राजस्थानी कहानी पाठ डॉक्टर माधो सिंह इंदा से आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। कहानी का शीर्षक है हिये उपड़ लो हाथ।

शास्त्रीय संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात्रि 10:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच का मैच को सुन सकेंगे। मैच इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य द ओवल लंदन में होगा।

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार का प्रसारण होगा सवेरे 8:30 पर। दोपहर 1:05 का समय रहेगा कृषक वर्ग के कार्यक्रम कृषि जगत के लिए। दोपहर 1:15 पर होगा महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी वाटिका।

संध्याकालीन सभा के आरंभ में होगा युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे से।

0: समूह स्वर में अभी आपने सुना देशकान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:20 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

आदौ मुख्य वार्ताः। डिजिटल इंडिया अभियानस्य एकादश वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेन अभियानेन निर्धनाः शोषिताश्च जनाः सबलीकृताः, सहैव लक्षाधिकानां नागरिकाणां जीवनं परिवर्तितम्। विकसित भारत जीरामजी अधिनियमस्य पञ्चविंशत्यधिक द्विसहस्रतमस्य अन्तर्गत

0: पूर्ण समन्वयं कृत्वा प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः व्यापकं वित्तीयं संरचनात्मकं च साहाय्यं प्रदास्यति। राज्ये तावता चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, एकविंशति जनाः व्रणिताः समभवन्। राज्यस्य अष्टाविंशति जनपदेषु नवनवत्यधिक चतुश्शतोत्तर नवतिसहस्राधिकाः जनाः अस्मात् प्रकोपात् प्रभाविताः सन्ति। अरुणाचल प्रदेशे समीक्षां विधाय केन्द्रीय मन्त्रिणौ चौहान रिजिजू इत्येतौ असमराज्यस्यापि जलाप्लावेन ग्रस्त क्षेत्राणां निरीक्षणाय प्रस्थितवन्तौ। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। एकत्रिंशत्तम सेनाध्यक्षत्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य अद्य प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीयसेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविध क्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारिका दूतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे अष्टचत्वारिंशदधिकैकशत एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य सप्तदशांशोत्तर सप्तदशाधिकैकशत किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति, यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभागः अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तरप्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भक्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य 16वें चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
4: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा है।

0: और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बनी है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डीबीटी से हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। राजस्थान में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाया जा रहा है।
1: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से एआई का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें एसटीटी, जीडीसी, एचजी एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश की आईटी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीकी नवाचारों से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की बात सार्थक हो रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
0: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में कल विभिन्न प्लेनरी और ब्रेकआउट सत्र होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। बैठक के फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग को स्वीकृति दी गई है। इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच संपर्क बेहतर होगा। इस पर 6,970 करोड़ रूपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
3: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। श्री मोदी बालोतरा के पचपदरा स्थित देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दौरे को यादगार बनाने और हरित विकास की अलख जगाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है।
4: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात

0: वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज लोक मंथन 2026 के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिरकत कर रहे हैं। हम भारत के लोक थीम पर इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन इस साल दिसंबर महीने में होगा। ये आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय चिंतन को समर्पित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित समिति ने गृह मंत्री को बताया कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। साथ ही इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय होगा और विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। समिति ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली तैयार की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज खिलौना बैंक शुरू किए गए। साथ ही इन केंद्रों पर प्रवेशोत्सव और पौधरोपण के कार्यक्रम भी रखे गए। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने जयपुर के गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को प्रवेश किट भी वितरित किए। उधर नंद घर योजना के तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली के महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार ने बताया कि जिले के 222 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में बदलने का काम पूरा हो चुका है।
2: जिले में 222 नंदघरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहती है, जिसमें और केंद्रों को भी नंदघर में चयनित किया जा सकेगा।
1: जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता हुई। इसमें यूनियन की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। विभाग के सचिव रवि जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से कुछ मांगों पर सहमति के बावजूद सफाई संगठन अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में परंपरागत रूप से साफ सफाई का काम कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
1: सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जल्दी ही हड़ताल समाप्त करने के बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अगले 2 दिनों में मॉनसून के आगमन की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बरसात शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मॉनसून की दस्तक करीब 8 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस बार जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मॉनसून के प्रवेश से पहले प्री मॉनसून गतिविधियां कुछ भागों में सक्रिय है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात हुई। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चली। भरतपुर में सुबह पानी बरसने के बाद दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चला। राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर आज छितराई हुई बारिश हुई। आज 24 जिलों में आंधी और बरसात की चेतावनी है। कल से 4 जुलाई के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार हवाएं और धूल भरी आंधी का अलर्ट बताया गया है।

0: वहीं दूसरी ओर ज्यादातर हिस्सों में दिन भर तेज धूप और उमस का असर रहा। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बी सी राय की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया।
1: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूँ। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा। और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले दिन जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बिजली, पानी, सड़क, पट्टा वितरण, नाम परिवर्तन, आबादी, भूमि से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान सहित प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं। गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डैयाणा में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी के महत्व और विकास योजनाओं के निर्माण में आंकड़ों की भूमिका पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे और अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई। प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गईं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के किसानों को 23वीं किस्त जारी की गई। कृषि विज्ञान केंद्र फलोज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1,53,000 से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि जमा की गई। खातों में राशि पहुंचने पर किसानों ने खुशी व्यक्त की। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को भूमि की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। आदिवासी अंचल की शिक्षा की प्रतीक शहीद वीर बाला कालीबाई का शहादत दिवस जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उनकी जन्मस्थली रास्तापाल सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योग

0: दान और बलिदान को याद किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी जिले भर में मनाई गई। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप के त्याग, साहस और स्वाभिमान को याद किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय समारोह डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में पिछले दिनों प्री मॉनसून की अच्छी बारिश हुई। बारिश से तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि उमस का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुटने लगे हैं और अच्छी मॉनसूनी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारा ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलाव रा बारा माय बनाई जी आला दर्जारी समिति सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो। और राज्य में चौमासा रे बिरखा बेगी सरू है वन रहा आसार। उगनी हल्काओं बिरखा सरू है वन रे संभावना। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव रो मजबूत जरियो बनी है और तकनीक काम लेर सरकारी योजनावा में दलालान रो दखल खत्म भयो है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा उद्घाटन समारोह में बोल रहा है। वे कहो कि डीबीटी उन हर योजना रो फायदो सीधो पात्र लोगों रा खाता में पोग रियो है।
2: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से एआई का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
1: मुख्यमंत्री ईमो के स्मार्ट परियोजना ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज री शुरुआत कीनी। इनु पहली वह तकनीकी सेवाओं बारा माई लगाई जी प्रदर्शनी रो उद्घाटन कीनो और वन निरखी। ई पाछे श्री शर्मा उद्योगों नुमाइंदा सागे बातचीत कीनी। इन दौरान वे बतायो कि राज्य ने डेटा सेंटर हल्का माए 43,000 करोड़ रुपये बत्ती रकम रा निवेश प्रस्ताव मिलिया है। आमाए एसटीटी, जीडीसी, एचजी एकाया और नायो बोल्ट समेत कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश रा आईटी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ही कार्यक्रम माए मारा विचार बताया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका राठौड़ कहो कि तकनीकी नवाचाराओं न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन री बात सांची वे रही है।
3: हर सेक्टर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।

0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकार कानून मिलर कराया जा रहा दो दिन राई सम्मेलन रो मुद्दों विकसित भारत 2047 एआई एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस राखी चियो है। सम्मेलन में काल न्यारा न्यारा प्लेनरी और ब्रेकआउट सेशन रखा जावेला। ई पाछे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देवेला। केंद्रीय कैबिनेट राजधानी दिल्ली सारू खास परियोजना ने मंजूरी दीनी है। मीटिंग में करी जिया फैसला ने जानकारी देता था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग ने मंजूरी दीरी जी है। इनु आतुणी और लंकाऊ दिल्ली बीच जुड़ाव बेहतर वेला। ई काम माथे 6,970 करोड़ रूपये बत्ता खर्च कर वेला।
1: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा न ध्यान रखता थका तैयारियां जोर शोर चल रही है। श्री मोदी रो बालोतरा रा पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो ही उद्घाटन करेला। माणा बालोतरा खबर नवीस बतायो कि प्रधानमंत्री रा दौरा ने यादगार बनावण और हरित विकास रे अलख जगावण सारू मोटा पैमाना माथे पौधा रोप्या जा रहा है।
2: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News राजस्थान पर आई सुन सको हो। इसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृहमंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा सदस्यां सागेफी मीटिंग माय ओ हुकम तीनो। समिति गृहमंत्री ने बतायो कि राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रो दौरो कर और ई बारा माय जानकारी हासिल करी जावेला। समिति जानकारी हासिल करण सारू प्रश्नावली बनाई है। ध्यानयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लारला साल आला दर्जा रा जनसांख्यिकी मिशन रो ऐलान की न हो चिंपाछे रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर री सदारत माए आ समिति बनाई ची ही। प्रदेश रा सगला आंगनवाड़ी केन्द्र माए आज खिलौना बैंक शुरू करी चिया। इसा गई प्रवेशोत्सव और पौधारोपण रा कार्यक्रम ही राखी चिया। महिला और बाल विकास विभाग रे शासन सचिव पूनम जयपुर रा गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक री शुरुआत कीनी। ई मौके बच्चा ने प्रवेश किट ई दिया चिया। नंद घर योजना रा तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्र ने और बेहतर बनाया जा रहा है। पालीरा महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पंवार बतायो कि जिला रा 222 आंगनबाड़ी केंद्र ने नंद घर माए बदलीकरण रो काम पूरो वेक्यो है।
3: जिले में 222 नंदघरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदघर में चयनित किया जा सकेगा।
0: स्वायत्त शासन विभाग रा सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन रा नुमाइंदा बीच आज जयपुर माए बातचीत हुई। इन दौरान यूनियन री कुछ मांग

0: मात्र एक राय बनी। विभाग रा सचिव रवि जैन खबरनवी संसागे बातचीत करता थका बतायो कि सरकार री ओर कुछ मांगा मान लिया पाछे सफाई कर्मचारियां रा संगठन दूजी मांगा न लेर अड़ रहा है। वह कहो कि सफाई कर्मचारियां री भर्ती माए मूल रूप साफ सफाई रो काम कर रहा लोगा ने प्राथमिकता दी जावेला
1: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल

0: सफाई कर्मचारी यूनियन रा अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया बातचीत ने सकारात्मक बताता था का कहो के सफाई कर्मचारियां री हड़ताल बेगी खत्म करन रे बारा माए फैसलो लियो चावेला। रबे मौसम राज्य में आवता दो दिन में चौमासा री बिरखा स्वरूप है वन रा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए भारी बारिश री संभावना है, जबकि 6 जुलाई तक प्रदेश रा घनखर हल्का माए में स्वरूप है वन री संभावना है। इस साल चौमासा री बिरखा लारला साल री तुलना में करीब 8 दिन मोड़ी स्वरूप है वन रा आसार है। मौसम विभाग जुलाई महीना में प्रदेश में सामान्य कम बारिश वे वन रो अंदाजो लगायो है। इबीचे राज्य रा कुछ हल्का माए चौमासाओं पहली री हलचल चाल रही है। लाडला 24 घंटा माए कोटा उदयपुर और भरतपुर संभाग माए थोड़े घने बिरखा भी। जैसलमेर माए आज आंधी चाली। भरतपुर माए संवारे भी बिरखा पाछे दिन भर सिलो बायरो बाज्यो। राजधानी जयपुर माए कठे कठे बारिश हुई। मौसम विभाग आज प्रदेश रा 24 जिला माए आंधी बारिश सारू चेतायो है। काल 4 जुलाई बीच बीकानेर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ माए जोरदार बायरो बाजन और आंधी चालन सारू चेताईचियो है। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा पहले वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय री याद माए ओ दिन मनायो जावे है। ई दिन इलाज रा हल्का माए डॉक्टर रा समर्पण सेवा भावना और इंसानियत रा प्रति योगदान रो मान करियो जावे है। जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति इलाज रा पेशा न सेवा सागे खुद न संतुष्टि देवन वालो बतायो।
1: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हों, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार न बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावा रा बारा माए बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो। और राज्य माए चौमासारी बिरखा बेगी सरूफे वन रा आसार। उगनी हल्काऊं बिरखा सरूफे वन री संभावना। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: दिनेश भाई कई, नविता जी कई है हाल चाल।
1: गुरिंद्र भाई देखो हाल चाल तो बढ़िया है और खास तौर से आपाणा जी का किसान भाई है उड़ीक कर रहा है मानसून रा कटी कटी देखो छाटा छुड़काव यही है हर लोग भाई है बाजरिया ऊंची आई है पर हमें देखो आस हमार भी कई किसान भाई बंदोड़ी है मैं हुयो कोनी
0: बिल्कुल, देखा अगर मानसूनरी बरसात रो अगर आपा जिक्र करा तो अमूमन पश्चिमी राजस्थान खास तौर माते जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, मतलब अरावली रो जो को और क्षेत्र है जके ने आपा पश्चिमी क्षेत्र के वहां, तो ये रे महीने जको अंतिम सप्ताह है जून रो, या यूं कहवा के 20 जून बरसात रो मौसम दस्तक दे दे मानसून।
1: हाँ
0: हमके भाई पड़गी पाछ काले कटेगी हम चार हाके भी गुजरात में कठी बरसात हुई है,
1: हाँ
0: तो हमें देखो

0: अनुमान करा के भाई आए पाए कठई में पानी रा हमचार पुख्ता हुए और अच्छी बरसात रा हमचार आवे आप ही बरसात री जकी उड़ी का पाने खत्म हुए जब तक एकम एक लगातार बढ़िया कोई झड़ नहीं पड़े 2-4 घंटा बरसात गांव रे महीने खेता में नहीं हुए जब तक आ तपतर आज की 30 है जकी धरती री आई मिटनी मुश्किल है।
1: सही कहो गुंदर भाई, आज की बादली आवे है कटी कटी, देखो मैं छांट कर दिया, हड़ोतियों भी कर दियो काजियो है। पहाड़े जिका गांवरा जिका किसान भाई है बाने उड़ीक रहेगी कि देखो पहाड़े गांव में मैं उगो या पहाड़े खेत में मैं उगो और मारे में नहीं हुई हो। किसान भाई 12 महीना री उड़ीक करे भी बढ़िया मानसून वेला, तो हम कहे देखो बाजरी बा वाला, मूंग बा वाला, मोट है, तिलन है, ज्यू दलना है, गंवार है, वो आपने खेता में लेवे तो देखो धान सुन भी उजा और हाथे जी को पशुधन है उनरे वास्ते चारों भी उजा।
0: देखो के अपनो पश्चिमी राजस्थान रो किसान है वो बरसात माते निर्भर है
1: हाँ
0: और बरसात रे चिरक चोड़ियों उगरी पूरो साल जको है वो खराब हो जावे और कटेन कटे हमें किसान रे ये में लागियो है के अगर डंगरी बरसात नहीं हुई रे इन तरह छाटा पड़ता रे यार दो खेत में पड़िया तीजो हुको
1: हाँ
0: तो भाई इन टाइम किसान रे हिम्मत ही नहीं पड़े कि वो बीजो लेन खेत में जावे जड़ तक भाई बढ़िया बरसात नहीं हुए धरती की रितिस नहीं मिटे तो भाई बीजो उरनु कहीं मतलब निकले क्यों के उन आ बिठा नहीं के आगे बरसात कणा हुई कहीं हुई। दिनेश भाई कठे न कठे बरसात रा जका ए प्रभाव है इन तरह री जकी परेशानी और दिक्कत रो सामनो इन मानव सभ्यता ने करनो पड़ियो है तो ये में आपनो भी बहुत मोटो योगदान है। लाल दिन में पढ़ियो के जका आप ठंडा प्रदेश गिना नहीं भाई फ्रांस के जर्मन
1: यूरोप
0: यूरोप तो
1: हाँ
0: क्या कोई वीडियो देखियो हुए रे महीने जर्मन री हड़का रे माते पौड़ी रा फुआरा पंखा ला गयोड़ा
1: सही कहो सा
0: ये कभी ओ कहीं है क्या इतनी तपत है के इन तपतों लोग उठे मर रिया है और उठे जो कि ठंडो प्रदेश है गर्मी थोड़ी कम पड़े एड़े में 45-47 डिग्री री टेम्परेचर में जो को है लू ताप घातरा जो को है मामला बढ़न लाग गया।
1: सही कह गुरुंद्र भाई, वाण देसारा मैंने जी का ठंडक राज्य का देश है, उटे भी टेम्परेचर 44 है, 40 है, 41 है, उगो करगो और जी की हड़का है पिघलने लागी, लोग हाले तो बूटा जूता रहा थे चिपन ढूंगो डम्बर और रेलरी जी की पटड़ियां है वे भी आगी फाची होगी। तो गुरुंद्र भाई और जलवायु परिवर्तन है, पृथ्वी रे ठोर ठोर क्षेत्र मैंने तापमान ने मैंने वृद्धि हो रही है, तापमान अटे पड़ रही है तो इनरो असर दूजा क्षेत्र में दूजा प्रांतर में पड़ रही है, तो ये सगली चीजें अपने हामी आ रही है। देखो वे लोग गुरुंद्र भाई ज्यादा गर्मी रा आदि को नहीं,
0: आदि को नहीं आप तम कहीं 40-42 तो आमुमन आम तौर माते
1: हाँ
0: आपने रे
1: सामान्य अपन जीवन जी ला सा और हलो टेम्परेचर वे तो अपने भी दिक्कत हो जाला। कटिन कटी आप जो बात बतायो कि मानु जी को है इन काम रे मैंने संलग्न है, तो ए जी का पेड़ है, पौधा है, रूख है, अपना प्राकृतिक जी का संसाधन है गुरुंद्र भाई, पर्वत है अपना, जंगल है अपना, इन मैंने अपना छिड़कानी स्वार्थ कारण कर रहा जिनरा परिणाम अपने हामी आ रहा है। पर एक बात जो आप बात बताई कि किसान भाई उड़ी करे, मैं तो यू कहूँ आस अपने राखनी चाहिए मैं जोरदार वेला
0: देखो उम्मीद माते पूरी दुनिया कायम है।

0: बात आप करी कि ये खामिया जो चुको है वो आप कर्मी रोई परिणाम है।
1: हाँ।
0: इन धरा माते अगर दरखत आप अगर इन्हीं तरह काटता रहा और वहां दरखत आप अपना घर में दरवाजा फर्नीचर बनाता रहा
1: हाँ?
0: तो भाई पच बरसात में तो दिक्कत आई।
1: सही कह सर।
0: कठे न कठे आपने होचना पड़ी कि आ धरती आ प्रकृति इरा जिता भी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा इरा सुनगार है इंसानी सभ्यता मिनख ने कोई हक नहीं है कि इन धरती रे माते वो छेड़खान करे। अब देख लो लारले 100 साल हूँ औद्योगिक क्रांति समझ लो या वैज्ञानिक सोच में आयो बदलाव समझ लो के एक गोल दड़ी है जके आप पानी भी काट रिया हन गैस भी निकाल रिया हन जको तेल है ऊ ने भी निकाल रिया हन खदान कोयलो ही काट रिया बात बात रहा जका महंगा जका तत्व है वह भी इन धरती निकाल रिया तो कठे न कठे पूरी मानव सभ्यता और लगभग 5-7 अरब खरब लोग जका इन की धरती है ये रे माते 24 घंटा लागोड़ा है के भाई इनु ओपत करा इनु 2 रुपया कमार उरे साथे साथे बड़ी बड़ी फैक्ट्री फैक्ट्रिया रो धुओं।
1: हाँ।
0: एक तरफ तो आवाने कर रिया खराब अर दूजो धरती माते आप कही है कि प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा ये रो उपयोग आप कर ला।
1: सही कह गुरिंद्र भाई मान को जी को है लगातार सतत रूप में जी को आधुनिक विकास जी को है हर क्षेत्र में कर रियो है मोटा मोटा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग है सड़का है बात बात री चीजा बनी है तो कठिन कठे जी आप बात बताइए तो बहुत गहरे साथे कही हो कि जी का अपना प्राकृतिक संसाधन है इन्हों आप अविवेक पूर्ण तरीके से आप खनन करियो हाँ आप काम में लिया हाँ कहे भी है नदी ने पिए कभी अपना जल वृक्ष ने खाए कभी अपना फल अपने तन को मन को दूजे को दे दो दान रे वही सच्चा इंसान रे।
0: बिल्कुल देखो कि वन है
1: हाँ
0: जनाई मिनखारो
1: तन है जीवन है
0: हाँ तन है तो जीवन है अगर आपने धरामाते वन खत्म हो जाए तो मिनखारो तन है उएरो अस्तित्व भी खत्म हो जाए बात आप करी दिनेश भाई के लू ताप थे।
1: हाँ।
0: तो एड़े में देखो आप अटे गर्मी रा आदि भी हाँ लेकिन अगर आप भूखे पेट गरु निकल गया हिर आपनो मान लो ढकेड़ो नहीं है 45-45 डिग्री टेम्परेचर है तो ये में आपने लू लाग जा खास तौर में स्कूल न खुले पच्चे टाबरा रू भी आपने ध्यान रखो पड़ी के भाई एड़ो नहीं हो जा के लू लाग जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए और एड़े में जटे बरसात ओड़ी है उठे तो मैं थोड़े टाइम में जो को मच्छर भी हो जाए और जो को तापमान है नी जखेरे महीने बरसात भी वेन उमस ही रहन तावड़ो ही पड़े तो वो एक तरह फंगल इन्फेक्शन रो टाइम है भात भात रहा इन्फेक्शन भी इन टाइम में हो जाया करे।

सही कहो गुरुंद्र भाई, हवा रे मैंने नमी वे नमी रे साथ कई भांत भांत रे जी का जीव है अपन पे। ए देखो छोटा अपना नवजात जी का शिशु है उन माथे असर करे, और खास तौर से आप जी की बात बताई स्कूलिया जी का टाबर है दिन उगते ही बेगा।

0: चिकित्सक जो को डॉक्टर है नी,
1: हाँ
0: वो न तो जाति देखे, न धर्म देखे, न रंग रूप देखे, न लिंग देखे, न देश देखे, न प्रदेश देखे,
1: सब
0: जो
1: करे।
0: भी रोगी उवेरे करने आवे
1: हाँ।
0: तो वो आदे कहे के ओ एकदम ठीक हो जावे।
1: हाँ।
0: वो जो को मानवीय सेवा रो गुण चिकित्सक क्षेत्र मायने है।
1: हाँ।
0: तो अगर आप डॉक्टर नहीं भी हो तो भी आप रे हीरे मायने मानवीय गुण होना चाहिए मानवतारी भलाई रे वास्ते। कोई भी अड़ी रीति, कोई भी अड़ो रिवाज, कोई भी अड़ी प्रथा, कोई भी अड़ी हुनी हुनाई बात की मिनक मिनक में भेद करे।
1: हाँ।
0: कि मैं हाँ करो ओ खराब, मैं खराब ओ मुई ज्यादा खराब, तो एड़ी बात ने त्यागनो पड़ी, छोड़नो पड़ी। ए कपोल कल्पित झूठी बात है जिको लड़ाई झगड़े ने बढ़ाने वास्ते, आप रो वर्चस्व बढ़ाने वास्ते करियोड़ी है। अगर आप मन को शरीर मिलियो है, मन को जमारो मिलियो है, तो मानवीय सेवा रे मायने काडो। मानवीय सेवा का ही जाति धर्म लिंग देश प्रदेश रंग रूप आ सब ऊपर उठन।
1: हाँ।
0: क्या नहीं भाई, मिनक मिनक एक है,
1: एक नई सोच रे साथे आगे बढ़े और जिको तुलनात्मक जिको अध्ययन करे एक दूजा रे मिन करो, वो ऊंचो है वो ऊपर चढ़गो और वो गरीब है वो अमीर है, ऐसा सब चीजा छोड़ता थका। मानु कल्याण जी की भावना है वह मन और मस्तिष्क में राखनी है। जद एक अच्छो परिवार बनेला, परिवार सु एक गांव बनेला, गांव सु एक शहर, शहर एक राज्य देश में अच्छे लोगों ने जी की थरपना है गुरुन्द्र भाई वह वेला।
0: और देखो हमें हताई गणी उगी इन कार्यक्रम रो बगत हो रही है पूरो।
1: हाँ सा,
0: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और दिनेश राणे जाने शेख दिराओ, राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: फट को डाली मैं आ रहा भाई।
1: अरे बेगी खोलो फटाफट नवला बाप आए हैं वो जो लियो ना हाथ में खोलो मारिया मरूं मैं तो अटे।
0: अरे आवरी भाई आवरी कौन कितरे
1: अरे राम राम पगे लागू
0: जीन सिरिया देखे भाई
1: ए ओ धम।
0: अरे
1: ओ नवलोबा थाने है भात तो गड़ो एक
0: गाड़ो ये कब कोई
1: अबे यू है हुड़ो मारी
0: चारो ले नहीं कहीं
1: अरे चारो वारो नहीं थाने काई बताऊ देखो आज वन महोत्सव नेरो ठीक है पछे ओके जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेरी एर पछे भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस भी हो तो नवलोबा माने आज एनी नहीं हुड़ो हुड़ो मारे स्कूल में नी नवलोबा मुफ्त में नी बेकाई के पेड़ पौधा बांटिया था जिको ए तो है थाने अलग गु देखो ए है पौधा ठीक है ए पेड़ अपन लगावना है ए पेड़ लगावा जने कई है पछे बढ़िया छाया बीजा दे इन फल दे
0: नो भाई क्या रखा रे लाइए कोई है जो की ना उठा है।
1: अरे नवलोबा
0: दिया पछे फल लागिया पर छा पड़ी
1: ए नहीं हो मैं लाई मंठा है नवलोबा आंवलो है ठीक है आम है ए चीकू है ए दाड़म है ए बड़े थाने
0: अरे वाह कर मार मुंडे पानी आउंडू को
1: वाह वाह नवलोबा वाह वाह
0: गिट नहीं उठे
1: एनी हुणो थान मुंडे पानी आवे थान बता दो थान खुलखुलियो जावे कोनी थे फ्रिजरा पानी पियो नवलोबा थे बर्फ रा पानी पियो थे
0: मटकी रो पानी पियो भाई
1: हां
0: हर्द गरम होगी हूं कह अन पहल के गाया है जको कह के थुड़गी
1: हां
0: आपस में लड़ी
1: अपन बीच तो नहीं गया था थे
0: अरे बंदनिया थोड़ा नाई की घेर लायो नी
1: हाँ।
0: भाई थोड़ो कहीं एकदम पसीनो हेड़ो पसीने में पानी पी लियो बाकी मार के अंबाई क्या थे दुआ फूका करी उड़ा है जो अंबाई क्या मैं छाती में जोर इतने ही आए हैं भाई
1: हाँ?
0: क्या थारे आज स्कूल में बैंक वाला ही आया
1: हाँ?
0: टैक्स लेबे ही आया
1: अरे भाई आया
0: हैंग बेड़ा
1: अरे माने हैंग जानकारी देन गया मैं अबार थाने हैंग बताओ हुनो तो सरी थे
0: है
1: वो नवलोबा पहली मन बताओ थे थाने काई कोई ओड़बा भी जा तो गोनी है
0: ओड़बा तो मने हैंग मारे छाती में लिया बैठो हूँ कृष्णो जी
1: लोग अभी अड़ा ही जाए नवलोबा
0: अरे कृष्णो जी पानी भाई कहता थार कितुरी राख लो मारे उजाड़ कटो करियो घर में मारो माकन क्यों खाया है
1: की उजाड़ नहीं करियो नवलोबा कई ठंड ठाक होनी देखो थे गर्मी पड़े तपे घणो हलो तपे जण पछे कई करा भूख मरता कटी कटी डाकर डाला जण पछे वा किसने किशन जी रटे गाल दिया पानी बाई रटी मैं क्यों वो पड़ियो छाछरो भरियोड़ो गेलड़ियो जिको मैं क्यों उदा दो पूरो पी जाओ
0: कैडी जलवी और
1: गरम
0: बड़बर ने है माकन खाजा होनी
1: तो माकन मिश्री थे
0: क्यों
1: तो
0: अपार घर जड़ी खावे नहीं क्यों बात करे
1: अरे काल जो बड़े गर्मी गणी पड़े यही तो पावे कोनी नवलोबा जन माँ कही करा चोर चोरन पी ला
0: नहीं करनो भाई
1: मैं खाई ले मैं माखन मिश्री दही
0: हम क्या कभी कहवा दियो तो मारे पास मार जड़ भूडो को
1: यो
0: हाँ पहले देखा रूकड़िया लाई के जगह कहीं है पर पहले हम खाडा खोद दो
1: हाँ
0: खाडा खोद मैं कोई मिंगनी यारो खाद देखो
1: हमें मानसून आवन वालो है नवलोबा
0: हाँ, तो हाँ। हूं क्यों करे
1: ठीक ठीक है मैं मिंगनी यारो खाद नेक दो पछे
0: पछे मैं पास लेके काली माटी नेक
1: ठीक
0: और माते है जो एकदम कोई पत्ता नीमड़ा रान दूजा नेक दो बन खाडे ने पास पानी भर दो
1: वाह वाह
0: और जिन दिन सोको जमा जम में होई
1: हो
0: उन दिन आप रोपण कर दियो
1: ओ नवलोबा जड़त है
0: पछे आपारे गाड़ी ने देख
1: आज
0: नहीं चुकी कौन दो चार बरो जोरदार रूकड़ा हो पता देखे भाई कहीं तो कह कोई बोली कहीं हेलिको कह चिड़िया बोली
1: अनाप
0: कह नहीं कोई जने थे बंद में गिया वो नी मोटे बंद में गिया वो जैसे रूकड़ा ही रूकड़ा वह उठे कितना कह नहीं पंखे रू है
1: आवाज केड़ी बढ़िया बढ़िया आवे नवलोबा
0: तो मैं कोई बाग बगीचे वाली बात हुई तो अपन कह नहीं के चाहो तो हैंग हो सके
1: हाँ सही बात
0: नहीं जिद पचवा की नहीं हो सके हम जानी
1: नहीं जाने तो पचवा बेटा भूखा।

0: यूं करें
1: कि चाहो तो भले ही डाका डालन खाए लो।
0: अरे मैं डाका चोरिया डाका मत करो लकड़ जोड़ दो ठीक रही पच कटी है जी कह नहीं पुलिस वाला हड़ बिठो की
1: पुलिस वाला फटा बहुत डर लागे तुम लोग फटा बहुत खतरनाक बार है बार है
0: एड़ो काम क्यों करो थे तारे दिनू के एड़ो कोई काम नहीं करना दिन भी दिए पछताओ
1: मन नवलो बार मने मने ध्यान है कृष्ण राम जी बेनी बे मारा एनी कोनी शिकायत कौन करे पुलिस में नवलो बा
0: अरे कारी मनठा पानी भाई हूं गया
1: पानी भाई कोनी करे वो मनठा
0: अरे कई आप आज मैं मने कह हो गया
1: मैं थाने करे पुलिस में थोड़ी करे नवलो
0: वाह भाई की कोनी मैं देखे कह गाबो फाटे तो कारी देवा हां मैं क्या नहीं कि
1: माने थे फटो फटी फटेड़ा कढ़ाई देव नवलोबा
0: बोल दिया मैं कोई घकरो कोई घी थुड़ाओ कन कोई
1: अरे
0: कोई लड़ी बोलती वैन में क्या नहीं मोरिया बोलता वे तो कोई घी थुड़ा
1: यू वाह जड़ लो

0: वाह भाई ये वानियाल कर दिया
1: है नी?
0: गीत लो बहुत बढ़िया हो।
1: लो हमें नवलोबा हुणो अबे मैं माइनर अडल्ट में आई गयो तो थे मारो एनी चाल ना एसबीआई में फटाफट है जी कुमार खातो तो खोला है दो पचे।
0: हाँ अत बात है तो बैंक में खोला दे बचत करी।
1: हाँ
0: आई क्या
1: और आज 1 जुलाई है नवलोबा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो स्थापना दिवस है।
0: आज थरपी जी है नी
1: ए नवलोबा हुणो एनी हैंगो पहली जद अंग्रेज अठे होता नी बी टाइम में 3 बैंक खुली थी।

0: लो बा, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और पछे आ तीना ने जोड़न बनाई थी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जी की नवलोबा 1 जुलाई 1955 जब अपनो देश आजाद हो गयो थो नी उरे पछे इरो राष्ट्रीयकरण कर इरो नाम रखियो तो भारतीय स्टेट बैंक।
1: ओ ठीक ठीक है, यहाँ पे एक नाम हो।
0: हाँ।
1: तो मुबारकबाद है भाई, देखे बैंक अपारी बैंक में पहला बार एक रुपया लावता है। हमें कहे का हर एक बात सुपिता होगी क्या भाई, के किसी हुई की लोन मिल जान, ट्रैक्टर भी मिल जान, आपरी बचत में भाई जमा करा दा तो कह नहीं के भाई आप सुरक्षित है।
0: हाँ यू ये बात तो मैं थान क्यों मार फटाफट खातो खोला है दोनों।
1: कोई चीज पूछ है जिसको कभी खरीद वो कह मोल ला लावे नहीं तो टैक्स देना जरूरी है भाई।
0: हाँ
1: चलान क्या दे
0: ओ नवलोबा, अपन अट टैक्स होवे जीएसटी अबार जी को चालू करियो है नी, बिरो नाम है वस्तु एवं सेवा कर, समझिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिने कहवे, और अपन 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में लागू हुई थो ना।
1: हाँ तो कह नहीं भाई, देखो छोको कह के टैक्स दे हो तो तरक्की चौकी हो, कोई चोरी जारी नहीं करनी।
0: यू
1: आपकी ईमानदारी
0: पर चोरी नहीं करो, बीमा मत करो तो पचे की मैं करा ना लो भाई, मत करो भाई।
1: बात है ईमानदारी है जो मोटी है, ईमानदारी कोई करो तो कह नहीं हो रे हुकुम हो रात जज को
0: यो
1: तो वही कह नहीं भाई हुदारो ठीक हो ना के देश में ये खाती एक जड़ो टैक्स हो गो
0: अपन एक ही नारो नवलोबा, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार।
1: हाँ बात अच्छी है नी, सो की बात भाई इस दिन का सो कोई है।
0: हाँ।
1: हमें आज कुन जलमियान कुन फोत होया।
0: हाँ।
1: देखो भाई बता दे जी को क्या भाई देखे कुन जलमिया भाई आज।
0: अरे नवलोबा थाने ठाए आज अपने भारत रा महान चिकित्सक, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद डॉक्टर विधान चंद्र राय साहब रो आज जन्मदिन है नवलोबा।
1: ओहो,
0: और नवलोबा थाने ठाए मोटी बात हुणो थे आनी पुण्यतिथि भी 1 जुलाई नहीं आया करे।
1: ओ जन्मन है जी को फोत रेड़ा एक दिन,
0: एक ही दिन।
1: अरे वाह भाई, बिरला मिनखा और गुणी मिनखा क्या देश री आजादी रा सिपाही हा, अपन आजाद करान किया तो एड़ा बिरला मिनखा ने परबाते पोर धोक देवा कोटी कोटी नमन करा मन
0: नवलोबा। आने आने जन्मदिन ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस रे रूप में भी मनाया।
1: हां डॉक्टर डॉक्टर दिन है भाई।
0: तो नवलोबा थे आज मारे आते हालिया क्यों कोनी
1: मैं अरे पछे बाद कल आ
0: फ्री फ्री इलाज करा दे थी मैं आज
1: कल हाल जाऊं ले भले तो है
0: बड़ा नवलोबा। हमें हुणो थाने आज मैं सुनाऊ बांसुरी, बांसुरी जीरो नाम
1: बांसुरी बजावनी आवे थाने।
0: अरे मने नहीं हो नवलोबा, पंडित हरि प्रसाद जी चौरसिया जीरी बजायोड़ी।
1: हाँ मैं तो भाई बांसुरी जोर बजावता
0: अपने भारत रा कई विश्व रा प्रसिद्ध शास्त्रीय बांसुरी वादक।
1: अरे मैं तो हाँ भाई देखा बिस्मिल्ला खान जी तो बजावता कई कह से नहीं।
0: हाँ।
1: और हरि प्रसाद जी बजावता है बांसुरी।
0: हाँ।
1: तो दो ही है जो कह नहीं काशी विश्वनाथ
0: वाराणसी में
1: हाँ उठे बजावता जो देखे गंगा जमुना अपर क्या नहीं नदियां है।
0: हाँ।
1: बारो पानी आगे जान समुद्र में एक वैसू जो अपरी है जिसको संस्कृति अड़ी है।
0: हाँ अपनी भारतीय सरकार नवलोबा ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित करियो।
1: वाह भाई वाह, तो एड़ा क्या नहीं भाई संगीत रहा क्या के भाई तपस्वी है।
0: हाँ।
1: आ की उम्र है जो क्या नहीं बांसुरी बजी।
0: हाँ।
1: तो थोड़ी मनी हुना दे भाई
0: अबार हुना नवलोबा।

0: वाह भाई ये क्या नहीं थोड़ी हूं तो
1: जी सो रोजाना
0: व्लॉग
1: मिश्री गुड़गी हाची बात है
0: आरानी कोटी कोटी नमन करा
1: मनले रा फूल चढ़ाओ
0: बड़े
1: बड़े नवलोबा आज जन्मदिन है डॉक्टर कन्हैया लाल नंदन जीरो ए अपने हिंदी साहित्य में पत्रकारिता और काव्य जगत में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुई है नवलोबा
0: हां भाई जगह गुणी मिनखा और आप रखा निशो का काम कर किया तो नहीं कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है और मनले रा फूल चढ़ाओ बड़े
1: बड़े नवलोबा आज जन्मदिन है लीलाधर जगुड़ी जीरो ए भी हिंदी साहित्य रा कवि हुआ था और लेखक भी और पत्रकार भी होया
0: हाँ भाई बहुगुणी मिनखा
1: हाँ नवलोबा आने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्मश्री व्यास सम्मान सम्मानित
0: करिया भाई चुकमा दे ही कह सो की सेवा माते हैं बाता मेवा मिली
1: हाँ
0: कोटी कोटी नमन है,
1: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जीरी ए भी अपने भारत रा स्वतंत्रता सेनानी प्रखर राजनेता समाज सुधारक और हिंदी रा सेवक होया था
0: वाह भाई वाह भारत भूम है जी को धन्य है
1: ए हिंदी भाषा वास्ते अन्ना संघर्ष करियो ई वास्ते नवलोबा आने आयरन मैन ऑफ हिंदी कही जे
0: हाँ सी बात है भाई कोई न कोई देखो कुदरत की इनकी करावे जे तो बे करे न करे जित पद कह नहीं की भाई देखे एक बार करियोड़ा काम कोई नहीं भूल सके और नाम ही पुरुषोत्तम है एक पुरुष हुआ है एक
1: पुरुषों में उत्तम
0: ठीक है तो आनी कोटि कोटि नमन है
1: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है बंगाल री एक नीडर वीर महिला स्वतंत्रता सेनानी जिनारो नाम हुयो तो वनलता दास गुप्ता
0: ओहो भाई देखे भाई
1: आने का ही है कि बहुत ज्यादा सांस में तकलीफ होती नवलोबा
0: दम सर तो है
1: हाँ तो आना घरवाला जी का माँ बाप होता नहीं बह क्या होता कि नहीं थे बारे नहीं जाऊला ठीक है नहीं तो थान तबियत खराब हो जाए तो ही नवलोबा है क्यों नहीं जाऊंगी और संघर्ष करूंगी और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगी
0: हाँ सी बात देखे भाई के हौसलो आरो ऊंचो हो
1: हाँ।
0: मजबूत हो और शरीर तो कदी न कदी छोड़नो पड़ी
1: हाँ।
0: तो परोपकार वास्ते जिको काम करना लो है बाने कोई नहीं भूल सके
1: हाँ।
0: रानी क्या नहीं भाई देखो के भाई कोटी कोटी नमन
1: है बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है आबिद खान जीरी और जी का कारगिल रो युद्ध हुआ था नवलोबा कद हुआ था
0: और 99 में हुआ
1: हाँ तो ए अपने कारगिल रे युद्ध में हुआ वीर शहीद लांस नायक आबिद खान जी है जी कहानी आज पुण्यतिथि है नवलोबा
0: भाई देखा कि 99 में क्या पड़ोसी मुल्क है वो मैं क्या नहीं खोटी कर तू तो करी तो अपने क्या नहीं हम जंग उबी भाकर हुई और उमे शहीद होया तो क्या नहीं भाई देखा कि शहीदी वे और देश रिवाज तो क्या नहीं है आप है जी को
1: मानो ने नवलोबा मानो आखिरी संदेश हो आपरे परिवार वास्ते यदि मैं वापस न लौटू तो गर्व से अपना सिर ऊंचा रखना
0: हाँ भाई देखे कह रही सुधा
1: 17 दुश्मना ने एक हाथ खत्म करियो
0: करिया भाई तो देखे कह रहा क्या नहीं कह रहा बिरला

0: कह वीर वह जिको वह रानी है जिको कह नी किदत रा गुल पेश करा और भारत माता रा सपूत ने सत सत नमन करा। ठीक है नी हमें भाई कि तुरी मने कोई अर्जिशियो तो हुना ए
1: यो
0: हाँ
1: वाह वाह जना
0: हुना भाई ए,

0: वाह भाई ये वाह
1: लवला बा मैं थे मैं रोकी करता हूं तो कर दो मैं हो गया कट काया
0: भाई हूं तो देखे
1: मोर अलैया हूं हैंग उपड़ गया
0: अरे हूं तो को मारी माते मेलाया
1: माता मेलाया बरगी जुआ खावे जू खावे बतो
0: हां तो मैं भाई देखे कि भाई वो तो कह नहीं कि कूकनो अपारे हाजरी बात है बरनो तो कह नहीं कि कुदरत
1: तो हमें की कर बरस थे की तपस्या बीजी क्यों अरे थे हैंग दिन लवला बा की ठोकता रहो खावता रहो है तो थे की तपस्या क्यों नहीं करो
0: बोली रे बोली जाने मिनका में गुनो करे
1: पहले क्या होता नवलोबा नहीं पहले क्या होता कि बूढ़ा वडेरा हो जी की तपस्या करे दी
0: अरे हूं अरदास घड़ी करू
1: तो पछे मैं बरसे अरदास में थाने दम कोनी नवलोबा
0: अरे
1: हवड़ कोन करो नी
0: अरे मिनकारी नीत है जेड़ा कुदरत भरी पर मैं जरूर होई जोरदार होई नो बका दियो के कहे भाई एकदम कहे कोई हुई वे कोनी
1: हमें खेतम कई हो नवलोबा बताओ उड़ी के किसान तो मैंने उड़ीक रही है
0: देख हूड़ पाड़ करियोड़ो है कांटो पाड़ पर करियोड़ी है तभी यहाँ पर काट दी
1: आपा तो हैंग कर दियो मैं बरस ही कर
0: पड़ियो है और क्या नहीं बारी जिंदगी ना पई है जो क्या नहीं आशा मत है अमर है
1: यो
0: और हमें भाई किस दूर से
1: कहो
0: मारे थोड़ी तबीयत नहीं कल डॉक्टर साहब थोड़ा चेक करा दीजिए
1: आज हालता फ्री में हो रही
0: है आज तो मैं हमें दिन बदिया रात रखू ना
1: हमें कही हमें तो कैंप ही उठ गया
0: उठ गया तो की कोनी कल देख ले कह दे कल आई जी कोनी ना आ जाए
1: हमें चेती है
0: वाह वाह की कोनी हो जी हो हमें रसोड़े में पधारो थोड़ा तपनो तो है ही है
1: थोड़ा तपनो है
0: आज हूं तो कू आज यू करे नी खीज लो बना दे जो मार कहे की भाई थोड़ो खा ले मार हो रही हूँ जी
1: तो कटी बड़ा
0: भली बढ़ा दे
1: खाटो बनावा बढ़िया
0: तैयार करो
1: खींचो
0: हूँ फेर दू माड़ा माड़ा फेर बैठो हूँ बेलू तैयार कर दो और हमें देखे भाई तारा ही खासा ऊंचा आएगा है और अंधारियो पड़गो है प्रोग्राम टाइम ही होगो पूरा तो भाई से ना लेवा ही राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का पहला गीत हमने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, बोल थे आनंद बख्शी के और फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। आइए सुने अगला गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, बोल हैं समीर के, संगीत है आनंद मिलिंद का और फिल्म का नाम है दिल।

आइए सुनिए फिल्म संगीत का अगला गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज़ में। बोल हैं समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का और फिल्म का नाम है धड़कन।

कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, और आइए फिल्म संगीत में सुनते हैं अगला गीत, कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है ए आर रहमान का। फिल्म का नाम है जुबैदा।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए सुने उद्भव और प्रीथा मजूमदार का के स्वरों में अगला गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन रहा जतिन ललित का। फिल्म का नाम है मोहब्बतें।

फिल्म संगीत में आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है संजीव कोहली ने और फिल्म का नाम है वीर ज़ारा।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुने सोनू निगम और सुनिधि चौहान के स्वरों में। बोल हैं प्रसून जोशी के और संगीत है जतिन ललित का। फिल्म का नाम है फना।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: जितने पास पास सागर के लहर उतने पास तू।
1: फना फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। अब समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगी।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
3: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना

0: के नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों

0: नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का

0: निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपये पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर

0: विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अब न्यूज एट नाइट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: Gallery, Swar Prerna Vithika at Rang Bhavan Auditorium in Akashwani Bhavan, New Delhi. The photo gallery was inaugurated by Padma Vibhushan flautist Pandit Hari Prasad Chaurasia. Chief Executive Officer of Prasar Bharati Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani and DD News Rajiv Kumar Jain were also present at the event. Addressing the gathering, Mr. Dwivedi said, Akashwani has played a pivotal role in preserving and promoting India's rich musical heritage. Now to sports. In men's cricket, India will take on England in the first T20 international of the five-match series in Chesterlow Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In football, England will clash with Democratic Republic of Congo, DR Congo, in a round of 32 match of the FIFA World Cup at Atlanta in US tonight. In other round of 32 matches, Belgium will take on Senegal at Seattle, while hosts United States will face Bosnia-Herzegovina in California. So far, Mexico, France and Norway have qualified for the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat Ji Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a three-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 International, a five-match series tonight, and in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य सुधा। साहित्य सुधा में आज राजस्थानी कहानी पाठ। कहानी का शीर्षक है हिये उपरलो हाथ। कहानीकार हैं डॉक्टर माधो सिंह इंदा।
2: सिंजारी टेम ही सूर्य जी ढलन री तैयारी में हो चिड़कलियां ही घोंसलों में बढ़न खातर और बच्चियों ने चून देवन खातर गोल गोल उड़ रही ही। मैं खुद ही दिन भर भागा दौड़ी सू इन सांसारिक माया जाल री आपा धापे सू तन और मन दोनों सू थाक्यूड़ो घरे पुग्यो स्नान संपाड़ो कर देवी मारी पूजा अर्चना कर बेड़ूरो हेलो पाड़ियो बेड़ू कर सूतो तो आज झट आंख लागी नीतर ऊंग कई बार घनी दूरी आवे ऊंग में कणो हाथ ये माते आएगो ठाई नहीं पड़ियो माथे माय बतूलियों वेजियों अलेकू घटनावा विचार मनरा सुपना भावी योजनावा घर परिवार री घनकरी बाता भाइयों रो साथ और घात भाई गिनायतरी मदद और धोखा धड़ी नौकरी रा उतार चढ़ाव बेहिसाब खर्च खाते रा मकड़ जाल नी जानू कितरी बाता दिल दिमाग माय घूमर घालन लागी सब सुन सिरे मन माय आयो बालपने माय पिताजी री छाया उठ गई कुदरत रो केयर देखो मैं तो जी सारो मुंडो ही नहीं दिठो सरूपांत में ही माँ माथे बिखेरो भाखर टूट गयो मैं पांचों भाई और बहन सगला ही माँ भरोसे और माँ भगवान रे भरोसे नी नौकरी नी चाकरी खाउन राई फांफा पड़े माँ हार मत हिम्मत मुसाफिर रो मती तू राह में री प्रेरणा लेर खेती बाड़ी और दीनो धापो राख पांचों बहन भाया ने पाल पोस मोटाई कर दिया बाईरा पीला हाथ कर पांचों भाया ने फेरो ही दे दियो ईश्वरी मेहरबानी और मारी करड़ी मेहनत सु पांचों ही भाई ओले ओले उम्र परियान नौकरी सरकारी नौकरी लागा मारी मेहनत रंग लाई दो बेटा सरकारी अफसर बन गया घर चौकले में चावो बेगियो माँ ने कालजे में ठंडक पूगी और सोचन लागी मिनक जाने हूँ करूँ करण वालो कोय मिनक बापड़ो काई करे हरी करे सोय मैं पछवाड़ो फोरियो थोड़ा विचारी करवट ली मारी हिम्मत ने लकड़ा दे तो मारो मन सोचन लागियो भाई मरे बड़ घटे बाप मरे छत जाए जिन दिन खपे मावड़ी जग सुनो पड़ जाए जिन दिन खपे मावड़ी जग सुनो पड़ जाए बाप री अकाल मौत भी आई टींगरा ने माँ संभाल ले पर मारे गया पचे तो जग सुनो वे जावे माँ तो माई जवे मारी गोदी में माथो मेल और गोडे माथे घड़ी पर सोए उठो जाने मारी गोदी में सुर्ग रो सुख मिल गयो सपने में

माँ गोदी में माथे रे माथे हाथ फेरती केवन लागी, सत मत छोड़ी बेटा, सत छोड़िया पत जाए, सतरी बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। धन तो आव तो जाव तो रे बेटा, लक्ष्मी जी चंचला स्वभाव रहा है, आज अठे तो काले उठे, एक ठोड़ को टिके नी, सती जूना ने बांधन राखे। माँ केवन लागी, सतरो मार घणो दोरो वे बेटा, धर्म घटिया धन घटे, धन घटिया मन घट जाए, मन घटिया महिमा घटे, घटत घटत घट जाए। मारी सीख दे रही है बेटा, धर्म री जड़ हरी वे, सत्कर्म सु चालोला तो धन आवेला और टिकेला, मिनकी सरावेला नीतर, कीड़ी सींचे और तीतर खाए, कीड़ी सींचे और तीतर खाए, पापी रो धन परले जाए। इन वास्ते कही जो है, धनवंत जे धर्म नी करे, नरपत करे ने न्याव, जाए गड़ींदा खाओ तो धरती टिके ने पाओ। धनवंत जे धर्म नहीं करे, नरपत करे ने न्याव, जाए गड़ींदा खाओ तो धरती टिके ने पाओ। बेटा मिनक जमारो घणो धोरो है, और मिनक ने समझावणो उणसु ही धोरो, जीवते जीव ने कठई जक नहीं पड़े, जीवन खातर संसार में सतरे पंपाल करना पड़े। जब जिंदगानी पार लागे, मैं मारी हाँ में हाँ भरतो सोचू, माँ जिंदगी रा अले कू थपेड़ा खाए, कितनी गहरी बात कह रही है। मने एक कबीरी इन लेना में मारी पूरी जिंदगी दिसे, जीव जीव तो एक, जीव ने जोखियों लख अनेक, जीव थन जीणो पड़सी रे, काया थारी लीर लीर थन सीणो पड़सी रे, जीव थन जीणो पड़सी रे। फेरू पछवाड़ो फेरियो, विचारों री उदेड़ बन माय, बात मां सु हट खुदरे माथे आएगी। मैं सोचू सुखरो सागर तो घर वे, घर बिना धर कठे, परिवार रो हित प्रेम इज प्रगति री राह दिखावे। मैं टाबरा ने सतरिया फाड़ा खाए, नहीं पाल पोस मोटा कर सांतरी पढ़ाई कराई दी, पढ़ाई में तीना ने तो गोल्ड मेडल मिल गया, चारों बहन भाया ने माए सु तीन, एक भाई और दो बहन आरो सांतरो ब्याव कर दियो, मोटोड़ी बाई ने तो करोड़ों री जमीन लाखों बेच फेरो दियो। वाह भाई, लोगों री बाता में माँ बाप सु मुंड फेर लियो, गरज मिटकी गुजरी नटकी। बेटा सिखावणिया तो आकाश में घना ही उड़ासी, पण आकर धरती माते आवणो पड़ेला, बिड़ाया तो भाटो ही भागे, पण बैसा घर बिना धर कठई कोनी, बाप रे खून पसीने री कमाई सु पढ़ लिख होशियार बनिया हो, जनो आज गदगा करो, जना थाने पराया लोग चोखा लागे, अब की माए आडासी थारे है तो मैं जानूला, बैसा आ मती भूल जो, मीठो बोले मोरी और आखा गिटे सांप, खारी लागे मावड़ी और मीठा लागे लोग, आ नागी दुनिया है, कहतो न कही जियो है, आ भूले मती, दादू दुनिया दो मुखी इन में दो दागा, हारे तो कहवे बापड़ा, जीतो तो कहवे नागा। मारे मन में झाड़ उठी, अर मन केवन लागो, सासू जितरे सासरो, आसो जितरे मेह, संपत जितरे पावणा, जोबन जितरे नेह, जवानी बीतन दो, संसार थपेड़ा आवन दो, हाल बाप बैठो है, जड़ मेलो में मटका कर लो, मोटे शहरों री मंजिला गिन लो, भगवान रे घरे देर है अंधेर कोनी, जीवता माँ बाप री छाती रोंदो मत भूल जो, बालपण में माँ प्यारी, भर जोबन में नारी, बुढ़ापे में डांग प्यारी, बुढ़ापे में डांग प्यारी, ईश्वरी गत न्यारी। रीस में ही ये माते सु हाथ अड़गो बिग्यो, कालज में थोड़ी ठंडक बापरी, ऊपरते दूध माथे पानी रो ठंडो छाटो पड़ियो, विचारो रो बतुलियो थोड़ो मोड़ो पड़ियो, और मन कहवन लागो, शंकर और सुकरात बनिया, विष पीणो पड़सी रे, जीव थन जीनो पड़सी रे, संसार मतलब ही है, आप मिनकरी जकी जात है नी, जठे देख ले भरी परात, उठे नाचले सारी रात। इन दो पगों रे जिनाओ ने भगवान टाल कोई नहीं समझ सके, अब के नेठाव सु करोट बदली, मंदरी भड़ांच निकलिया, पछे ये माए ठंडक बापरी, माँ सीख देवे बेटा, रीस मती करे, काले सब ठीक हो सी, घर बिना धर कठई कोनी, सुबेरो भटक्यूड़ो सिंजारो घरे आ जावे तो भूलो नी कहलावे, जका दूजो रे हाथ री कटपुतली बने, उन्होंने वास्ते कहजियो है, जीनो जिन रे हाथ नहीं, जीनो जिन रे हाथ नहीं, घास बने और लोग चरे, फेरू करवट बदली, विचार री माला फेरू गूंथने लागी। मैं आज ताई सतरे तरह रा फाड़ा खाए, संपत्ति खड़ी करी, आकनी प्रोफेसरी नौकरी करने वाले री औकात कोनी, मारी औलाद आ बात भली भांति समझे क्यों कोई नी, मिनक ने मेहनत सु जी नी चुरावणो चाहिए, मिनक ने मेहनत सु जी नी चुरावणो चाहिए, भले ही कोई चीजा भागी सु मिले, फेरू ऊंग माई मारो आशीर्वाद रो हाथ, माथे ऊपर आवते ही ऊपर लो हाथ हट गयो। मां अर्थाऊ तरीके सु कहो बेटा, कहा जाया कहा उपन्या कहा लड़ाया लाड, कहा जाया कहा उपन्या कहा लड़ाया लाड, क्या जाने इस देह की कहा पड़ेगी हाड, तू किंडे घर री सोच करे, हरी करे सु होय, हरी करे सु होय,
उन लीली छतरी आले रे।

इशारे बगैर संसार रो पत्तो ही को आले नी, तू नी धड़क जीवन जी बडेरा कहर गया है। होनार होके रहे मिटे ने विधि को अंक, होनार होके रहे मिटे ने विधि को अंक, राई घटे न तिल बड़े रे रह जीव निशंक। विचारा री आंधी ढबकी, छाती मातलो भार हट गयो और आंख खुल गई।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य सुधा, जिसे ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चर्चा का विषय, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।
1: चर्चा का विषय है ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार जी।
2: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
4: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
2: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
3: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा,

0: पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
2: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
0: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूं कुसुम जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: कुसुम जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पे जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
0: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा

0: अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है। आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रूपये का भुगतान हुआ, वो भी एआई है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि अभी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहां ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजीली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इससे यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूज दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है

0: माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितने भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: तो सुन जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशन उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें अब आजकल डीप टेक जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है, तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में, और इसीलिए क्या हो रहा है जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है जितना कुछ है डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है, तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा IRBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोगों का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गए। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है, और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उससे।
1: प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमीकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है, टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक

0: पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमिकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
1: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमिकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक्स सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
0: कर रहे हैं हम
1: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
0: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
0: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब वो फेब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाए।

0: जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक ले जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंड ना रहे।
1: जी अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे। जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन्स या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं, मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेज हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉरपोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल हो या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं, उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन करे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए, जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इस पे एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी, या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
2: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं, एफटीए के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्रीस्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
0: हाँ जी जरूर। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव है, हम लोग को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव ढूंढा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत

नहीं है। आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे हमारा स्किल

0: जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है। और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं, ये पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।

लोकप्रिय और गंभीर राग राग मालकोंस पर शहनाई वादन, आइए सुने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पार्टी से।

आइए अब सुने शास्त्रीय गायन मुकुंद क्षीर सागर से। तबला संगत है साबित हुसैन का।

Yeah.

No.

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होंगे।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और